नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर, इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रुक करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर, जिसे आप सुन पाएंगे अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट के साथ में। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 9 बजे। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता।
1: सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
2: जागृति बोल, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बोन
2: हूँ था का
3: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा
2: खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: બાઈનબોનું ગીત તો અહીં શું પૂરું નાણ ગીત બાદ એક વખત ફેરી આપ સબનું ઘણેમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડીની. જેમ કે બાઈનબોનું ગીત કે પહેલાં આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે હર તે આદિવાસી સંસ્કૃતિ બહુઉદ્દેશ્ય કૃષિ વાનગીનું એક સમાધાન થઈ શકે. તો બાઈનબોનું અણ વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણા કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે મનીષજી સર. તો સૌથી પહેલાં આપણે હમરી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલી.
0: સર આપકા બહુત બહુત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મે.
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહુત બહુત ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મે આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કી આદિવાસી સંસ્કૃતિ જો હૈ વો કિસ તરીકે સે વનો કે સંરક્ષણ મે અપના યોગદાન દે સકતી હૈ. ક્યુંકિ હમ દેખતે હૈ કી વન હમારે લિયે બહુત મહત્વપૂર્ણ હૈ. અભી કે સમય મે હમ દેખ રહે હૈ કી વનો કે સંરક્ષણ કો લેકર હર કોઈ પ્રયાસ કર રહા હૈ. और आदिवासी संस्कृति हम सभी जानते हैं कि उनका जुड़ाव हमारे वनों से हमारी प्रकृति से पहले से ही बना हुआ है. तो ऐसे में हम आज कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आदिवासी संस्कृति जो है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है.
1: जी बिल्कुल, ये बात सभी जानते हैं कि वन संरक्षण के जो प्रयास हैं और आदिवासी संस्कृति से इसका जुड़ाव बहुत ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो यदि वन संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और लोक संस्कृति से जुड़े तरीकों का जो महत्व है उसका इनकी लोक संस्कृति में भी जो है निहित वनीकरण के जो सूत्र हैं वो अक्सर बड़े प्रभावी होते हैं और वो स्थायी भी होते हैं. वनों को जो बचाने में हमेशा से लोक संस्कृतियों का योगदान रहा है
0: बिल्कुल.
1: उसमें आदिवासी संस्कृति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि जो जंगल हमको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण एक बड़ा जंगल हम देख पाते हैं. पेड़, वनस्पति, भोजन उत्पादन की प्रक्रिया, परागण करने वाले कीट, मिट्टी की उर्वरकता, जल स्रोतों और जलवायु संतुलन, इन सभी के लिए वन बहुत ही जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: और इसीलिए वन संरक्षण को सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ये एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की देखभाल का महत्वपूर्ण मसला है.
0: बिल्कुल.
1: तो जिसका उद्देश्य भी है कि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाएं, इसके संरक्षण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम प्रोत्साहित करें और हम मिलके पेड़ लगाने की जो मुहिम है यहाँ तक सीमित न रह के इस पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्णता से जुड़ी हुई सोच के साथ इसे अपने जीवन में उतारे. क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहूंगा, वन है जो हमारे भोजन, पोषण, हमारी दवाइयां और हमारे पशुधन, इसी के साथ साथ हमारी मिट्टी और जल, इन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो वन अभी के समय में बचे हुए हैं वो आदिवासी संस्कृति के एक जुड़ाव से, उनके प्रकृति के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं. यही सर अभी के समय में क्या चुनौतियां हमारे सामने आती है वनीकरण को लेकर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी.
1: जी, सामान्य रूप से यदि हम चुनौतियों की बात करें तो वनीकरण के जो कार्यक्रम है आजकल तो ज्यादातर उनमें वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाता है. प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से हम इसे ही वनीकरण का मुख्य तरीका मान लेते हैं. यह तरीका पर्यावरण के संपूर्ण पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है. अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है तो हम देखते हैं कि कई बार वनीकरण में जिन प्रजातियों का चयन किया जाता है तो वो गैर स्थानीय प्रजातियां होती हैं.
0: बिल्कुल.
1: इसी कारण से कई बार ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के भी लिए नुकसानदायक होती है और वनीकरण के लिए किए गए हमारे जो प्रयास हैं उनमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना हमने उसके लिए प्रयास किए थे, वो चाहे हमारे आर्थिक हो या अन्य तरह के प्रयास हों. इसी तरह से यदि हम देखें कि दक्षिणी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहां वागड़ अंचल में, तो इसके दुष्प्रभावों को हम साफ देख सकते हैं. पारंपरिक रूप से राजस्थान के सामुदायिक वन और गोचर भूमि या चारागाह स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित जगह हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ गैर स्थानीय पौधे काफी बड़ी मात्रा में लगा दिए गए हैं, जिससे न केवल स्थानीय घास की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है बल्कि वन्य जीव और परागण करने वाले कीटों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है। वन संरक्षण की योजनाओं में इन परिस्थिति की और सांस्कृतिक जरूरतों की ये एक तरह से अनदेखी है, जिससे वन प्रबंधन में एक रूपता और कृत्रिमता बढ़ गई है। यानी कि एक ही तरह के पेड़ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं जो कि जीव विविधता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वनीकरण के जो मौजूदा प्रयास है उसमें हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति का क्या योगदान है वन संरक्षण को लेकर।
1: पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति वन संरक्षण के प्रयासों में जो इनके सांस्कृतिक तरीके हैं उनका बहुत विशेष महत्व है। लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र अक्सर प्रभावी और स्थायी होते हैं। तो उदाहरण के लिए राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को हम अगर देखें और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पहला दृष्टिकोण प्रशासनिक है जो कि एक मॉडल पे आधारित होता है, जिसमें कई बार व्यवसायिक वृक्षारोपण को ही मुख्य उपाय मान लिया जाता है। तो वन विभाग का या प्रशासन का ये जो दृष्टिकोण है स्थानीय क्षेत्रों में अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि ये कई प्रजातियां ऐसी होती है जो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुरूप नहीं होती है। तो यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनीकरण के स्थानीय मॉडल अपनाए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बजाय पहले स्थानीय घास और पौधों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाने की पहली सीढ़ी हम इन्हें मान सकते हैं। अब इसी तारतम्य में यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें तो जो हमारा आदिवासी समुदाय है जिन्होंने अपनी पारंपरिक वनीकरण पद्धतियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे वागड़ क्षेत्र की भूमि पर स्थानीय पौधों घासों का रोपण किया। जो जगह किन्हीं कारणों से या तो पेड़ों की कटाई से या किसी तरह की दूसरी परियोजनाओं में खत्म हो गई थी, वहां पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई और परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में वहां वन्य जीवों की भी वापसी हुई है, जल स्रोत पुनर्जीवित हुए हैं और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की झलक वहां नजर आने लगी है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है उनके प्रयासों को हम देखते हुए हमारे वनों को हम बचा सकते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें पारंपरिक ज्ञान के तौर पर हमारे जो वन है उनको बचाने में योगदान दे सकती है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वन को बचाने के लिए जो नीतियाँ हम देखते हैं उसमें लोक संस्कृति की आखिरकार ज़रूरत क्यों है।
1: तो वन संरक्षण की मौजूदा नीतियों में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज करना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। वनों की वास्तविक सुरक्षा और बहाली के लिए हमें वन संरक्षण में आदिवासी लोक संस्कृति को जगह देनी होगी। वनों की पारंपरिक अवधारणाएं जैसे हमारे वागड़ क्षेत्र में मातानु वन, देवनु वन की जो संस्कृति हमें वनों के स्थानीय संरक्षण के सही रास्ते दिखाती है, क्योंकि इस तरह से संरक्षित की गई जगह से उनके उत्पादों का उपयोग करने में तो कोई रोक नहीं है, पर यहाँ से पेड़ों को काटा नहीं जाता क्योंकि इन्हें देवी या देवता का प्रतीक भी माना जाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामूहिक चेतना के सिद्धांत पे ये आधारित होते हैं, जिससे समाज में साझा विश्वास और मूल्यों की शक्ति पर जोर दिया जाता है। यह समुदाय को प्रेरित करता है कि वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद खुद उठाएं और वनों को एक पारिवारिक उत्तरदायित्व के रूप में देखें। इसलिए पारिवारिक स्तर पर बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकती है, जिससे समुदाय अपने पर्यावरण के साथ भावनात्मक और नैतिक जुड़ाव महसूस करते हैं।
0: जी जी।
1: वन संरक्षण और वनीकरण नीतियों में लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का समावेश अत्यंत आवश्यक है, जो आदिवासी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है।
0: जी बिल्कुल सर।
1: जब तक वनीकरण नीतियों में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्कृति के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक पर्यावरणीय स्थिरता का हमारा जो सपना है वो भी पूरा करने में कठिनाइयां होगी।
0: जी जी।
1: वनों की वास्तविक भलाई के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटकर पारंपरिक और सामुदायिक उपायों को अपनाने की जरूरत है।
0: जी जी।
1: तो लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र ही हमें वनों के संरक्षण और इनके स्थायित्व की दिशा दिखाते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वनीकरण के लिए आदिवासी संस्कृति की जो चीजें हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी संस्कृति में वनों को देवता या माता के तुल्य माना जाता है और उनकी कटाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से ये समझ पाए कि किस तरीके से आदिवासी जो संस्कृति है वो बहुउद्देशीय कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है। तो सर, कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है। आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણા વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડે તક હતા અને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। આશા કરા હો કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટ પડવાનું। તો સૂટ તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લાઈક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोला, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हो या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जिनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। हो भाई, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे, आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आंगनवाड़ी जाईने तारो नाम लकाओ, भारी पोग बेन तू जासे तिन कराओ।
2: सोराना नक्काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार।
3: भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर।
2: सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांसे महीने बाल ले आ खवानो आल।
3: अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है गांव का बचपन बनाम शहर के बचपन को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, बचपन जीवन का सबसे सुंदर मासूम और सीखों से भरा समय होता है। यही वह दौर है जहाँ इंसान के व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है।
0: बिल्कुल हाँ।
1: बच्चे जिस वातावरण में पलते हैं बढ़ते हैं उसी के अनुसार उनके विचार व्यवहार और आदतें और जीवन शैली विकसित होती है।
0: बिल्कुल
1: आज के समय में गांव और शहरों के बच्चों का बचपन काफी अलग दिखाई देता है। गांव का बचपन मिट्टी की खुशबू, खुले मैदानों, प्रकृति और सामूहिक जीवन से जुड़ा होता है, जबकि शहर का बचपन आधुनिक सुविधाओं, तकनीक, तेज जीवन शैली और सीमित सामाजिक संबंधों के बीच गुजरता है। श्रोता साथियों, दोनों प्रकार के बचपन की अपनी अपनी विशेषताएं और चुनौतियां और अनुभव होते हैं। गांव का बच्चा प्रकृति जीवन के करीब होता है, वहीं शहर का बच्चा आधुनिक संसाधनों, नई तकनीकों से जल्दी परिचित हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: सामुदायिक दृष्टि से देखें तो दोनों ही वातावरण बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि गांव और शहर के बचपन में क्या अंतर है, उनकी अच्छाइयाँ क्या है और सामाजिक जीवन किस प्रकार से दोनों के बीच संतुलन बनाकर बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर बना सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: जी
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्या ना साथियों को पहले यहाँ पर गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि साथियों गीत से पहले विषय बता ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम बात करने वाले हैं गांव का बचपन बनाम शहर का बचपन। साथियों, हम कह सकते हैं कि बचपन जीवन का सबसे सुंदर, सरल और यादगार समय होता है। यह वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बिना किसी चिंता के हंसता, खेलता और खुशहाल जीवन जीता है। बचपन की यादें कशिश व्यक्ति के मन में हमेशा जीवित रहती है, चाहे वह समय कितना भी बदल जाए। बचपन की मासूमियत और उसकी मिठास कभी फीकी नहीं पड़ती। आज के समय में बच्चों का जीवन बहुत तेजी से बदल रहा है अंजलि जी। आधुनिक तकनीक और बदलती जीवन शैली ने बचपन के स्वरूप को भी बदल दिया है। विशेष रूप से गांव और शहरों के बीच जीवन में काफी अंतर देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल रीना, आपने सही कहा। यही अब बात करें तो गाँव का बच्चा खुली हवा, तेज खलियान, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बीच बड़ा होता है। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की आवाज और मिट्टी की खुशबू उसके जीवन का हिस्सा होती है।
2: बिल्कुल,
1: प्रकृति से जुड़कर जीवन को समझता है। गांव के बच्चों को मौसम, खेती, पेड़ पौधों और पशुओं की जानकारी बचपन से ही हो जाती है। यही कारण है कि उनमें धीरे, सहनशीलता और सरलता अधिक दिखाई देती है।
2: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें खेल और शारीरिक सक्रियता की, तो दोस्तों गांव के बच्चों का बचपन खेल कूद से भरा होता है। वे मैदानों में कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, लंगड़ी, रस्सी कूद और न जाने क्रिकेट जैसे कई खेल खेलते हैं। साथियों, मोबाइल और टीवी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होने के कारण वे अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। इससे अंजलि जी और रीना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनमें टीम भावना विकसित होती है। वे हार जीत को स्वीकार करना जानते हैं और मिलजुल कर रहना भी सीखते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। अगर हम बात करें कि गांव में परिवार के बीच गहरा प्रेम और अपनापन होता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे अपने दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं। दादा नानी की कहानियां बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है। साथियों, इससे बच्चों में संस्कार और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित होती है।
1: जी हाँ, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि गांव के बच्चे छोटी उम्र से ही घर और खेत के कामों में हाथ बटाने लगते हैं। इनसे उनमें जिम्मेदारी की भावना जल्दी विकसित हो जाती है।
2: जी,
1: वे मेहनत का महत्व समझते हैं और परिवार के संघर्षों को करीब से देखते हैं।
2: बिल्कुल,
1: इस तरीके से हम जान पाए कशिश ये कि गांव के जो बच्चे होते हैं उनका बचपन कैसे होता है। आगे हम कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे शहर के बच्चों के बचपन के बारे में। लेकिन अभी मन कर रहा है कि एक प्यारे से गीत के साथ में हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा देते हैं।
2: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना गांव के बच्चों का बचपन कैसा होता है, यही अगर बात करें शहर के बच्चों के बचपन के बारे में
1: जी,
0: तो श्रोता साथियों, शहर के बच्चों को अच्छी शिक्षा, आधुनिक स्कूल, कंप्यूटर, इंटरनेट, लाइब्रेरी और अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का अवसर आसानी से मिल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: नई तकनीकों से जल्दी परिचित हो जाते हैं, उनके पास सीखने के अनेक साधन होते हैं जिससे उनका ज्ञान बढ़ता है और वे नई दुनिया को समझने लगते हैं।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि शहर का बचपन आज मोबाइल, वीडियो गेम, इंटरनेट और सोशल मीडिया से काफी प्रभावित हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे अधिक समय स्क्रीन में बिताने लगे हैं रीना, इसका असर उनके स्वास्थ्य, आंखों और मानसिक स्थिति पर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बच्चे बाहर खेलने के बजाय अकेले मोबाइल में व्यस्त रहते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर हमारे साथियों को हम बताएं समय की कमी और अकेलेपन की समस्या की, तो दोस्तों शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में रीना कई बार बच्चों को परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।
0: जी
1: हम देखते हैं अंजलि जी कि इससे बच्चों में अकेलापन की समस्या बढ़ सकती है। साथ ही जो फ्लैट संस्कृति और सीमित सामाजिक संबंधों के कारण बच्चे जो होते हैं वो पड़ोसी और समाज से उतना जुड़ नहीं पाते हैं जितना श्रोता साथियों गांव में जुड़ाव होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समय की कमी और अकेलापन भी एक समस्या है। वहीं अगर प्रतियोगिता के दबाव की बात करें तो शहर के बच्चों पर पढ़ाई, करियर और प्रतियोगिता का दबाव अधिक होता है।
0: जी,
1: छोटी उम्र से ही उन्हें अच्छे अंक लाने और आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल कर दिया जाता है अंजलि जी, जिस दबाव के कारण कई बच्चे तनाव, चिंता और मानसिक थकान भी महसूस करने लगते हैं।
2: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। कार्यक्रम के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आज शहरों में मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। बच्चे बाहर खेलने के बजाय स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताते हैं, इससे उनकी आंखें खराब होती है अंजलि जी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही वह धीरे धीरे प्रकृति से भी दूर होते जा रहे हैं।
0: जी हाँ, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि इस शहरों में ट्रैफिक, भीड़ और सुरक्षा कारणों से बच्चों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, वे खुलकर बाहर नहीं खेल पाते। माता पिता अक्सर बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बच्चों के विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। गांव के बच्चे व्यवहारिक ज्ञान अधिक सीखते हैं। अगर यही बात करें कि शहर के और गांव के बच्चों पर विकास का क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्रोता साथियों गांव के बच्चे व्यवहारिक ज्ञान अधिक सीखते हैं, जबकि शहर के बच्चे तकनीकी आधुनिकता ज्ञान जल्दी सीखते हैं। दोनों ही प्रकार की सीख जीवन में जरूरी है। गांव के बच्चों में सामाजिक जुड़ाव और सामूहिक भावना मजबूत होती है। शहर के बच्चों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास अधिक दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: गांव के बच्चों को शारीरिक गतिविधियां अधिक मिलती हैं, जबकि शहर के बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ने से स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सामूहिक दृष्टि से जरूरी पहल है कि गांव में अच्छे स्कूल, पुस्तकालय, खेल मैदान और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि गांव का बच्चा भी आगे बढ़ सके। इसी के साथ शहर में बच्चों को सामूहिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ना चाहिए, ताकि उनमें रिश्ते और समाज के प्रति समझ बढ़ सके। गांव और शहर दोनों जगह बच्चों को पारंपरिक खेलों से जुड़ना चाहिए, इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल और इंटरनेट जरूरी है श्रोता साथियों, लेकिन बच्चों के लिए उसका संतुलित उपयोग भी होना चाहिए। परिवार को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साथियों कि गांव का बचपन और शहर का बचपन दोनों अपने अपने तरीके से बहुत खास हैं। गांव का बचपन प्रकृति, अपनापन और सादगी सिखाता है, जबकि जो शहर का बचपन है रीना वह आधुनिक सोच, तकनीक और अवसरों से परिचित कराता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम दोनों की अच्छाइयों को अपनाएं। अंजलि जी, अगर गांव के बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले और शहर के बच्चों को प्रकृति या फिर सामाजिक जुड़ाव का अनुभव मिले, तो एक संतुलित और स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है।
0: जी,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन केवल सुविधाओं से सुंदर नहीं बनता है, बल्कि प्यार, संस्कार, स्वतंत्रता, सीख और साथ ही सामुदायिक सहयोग से समृद्ध होता है।
0: जी,
1: ऐसे में हर बच्चे को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए साथियों, जहां वह खुलकर हंस सके, खेल सके और सीख सके, साथ ही अपने सपनों को पूरा करने का साहस भी पा सके। अंजलि जी
2: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि यही एक मजबूत समाज और उज्जवल भविष्य की असली पहचान मानी जाती है।
2: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही काम कह सकते हैं कि आज के बच्चे पहले की तुलना में अधिक व्यस्त हो गए हैं। खेल कूद की जगह ऑनलाइन गेम ने ले ली है, दादी नानी की कहानियों की जगह मोबाइल ने ले ली है। यह बदलाव बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में भी गहरा प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल रीना, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
2: जी
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: बिल्कुल
3: अकेले हम, अकेले तुम।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपकी अपनी दोस्त

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना न कब्जू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिए आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिए, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ले आ खवानू आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
2: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
3: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
2: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
3: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
2: ये हुई ना बात गोरी।
1: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथ ही जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बात रहने वाली है काम के साथ आनंद में जीने का महत्व।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि श्रोताओं, आज का युग तेजी, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ का युग है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त है, युवा नौकरी और करियर में लगे हुए, महिलाएं घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभा रही है, बुजुर्ग परिवार की चिंता में लगे रहते हैं। ऐसे समय में लोग काम बहुत कर रहे हैं लेकिन जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और इन सभी के कारण तनाव, चिंता, थकान और अकेलापन बढ़ता जा रहा है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा।
1: श्रोताओं, जीवन केवल काम करने का नाम नहीं है बल्कि काम के साथ आनंद पूर्वक जीना ही सच्चे जीवन की पहचान है। कशिश, जब व्यक्ति अपने कार्य को खुशी और उत्साह के साथ

0: करता है तब उसका जीवन संतुलित, सफल और सुखद बनता है।
1: बिल्कुल।
0: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वही जानने वाले हैं कि काम के साथ हम आनंद में किस तरह से जिए, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
1: जी हाँ जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम जिस विषय को लेकर आपसे बातचीत कर रहे हैं वो हमें भीतर से मजबूत बनाएगा। साथियों, जैसा कि गीत से पहले बताया था कि काम के साथ हम आनंद में कैसे जी सकते हैं, इस विषय को लेकर आज हम बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और आपने बताया था जागृति जी कि आज के जो हमारे युवा साथी हैं वो कह सकते हैं कि करियर की दौड़ में बहुत ज्यादा परेशान है, जिसके कारण उनमें तनाव, चिड़चिड़ापन, ऐसी समस्याएं हो रही हैं। दोस्तों, पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगिता और भविष्य की चिंता होना आम बात मानी जाती है। लेकिन अगर आपको बताएं, इन सबके बीच कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जीवन केवल काम करने का नाम नहीं है, बल्कि आनंद के साथ जीने का नाम भी है। दोस्तों, यदि काम के साथ मन में खुशी, संतुलन और उत्साह न हो तो सफलता भी जागृति जी अधूरी लगने लगती है। हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन मशीन नहीं है, वह भावनाओं, सपनों, रिश्तों और उम्मीदों से बना हुआ एक जीवंत व्यक्तित्व है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए साथियों, काम के साथ साथ आनंद का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए भोजन और मन के लिए शांति।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि काम वही सफल बनता है जिसमें आनंद का रंग मिलता है। काम और आनंद एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। यदि कोई व्यक्ति केवल काम करता रहे और अपने मन को खुशी से दूर रखे तो वो धीरे धीरे थक जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति केवल मनोरंजन में डूब जाए और काम को महत्व न दे तो उसका भविष्य कमजोर हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जीवन में दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी कार्य को रुचि और आनंद के साथ करते श्रोताओं तो वो बोझ नहीं लगता है।
0: बिल्कुल।
1: कलाकार अपनी कला में आनंद खोजता है, किसान खेती में खुशी महसूस करता है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाकर संतोष पाता है और खिलाड़ी खेल में आनंद प्राप्त करता है। यही आनंद व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए कहा गया है कशिश कि आनंद से किया गया काम सफलता को नया आयाम देता है।
0: जी हाँ जागृति जी, और हम देखते हैं युवा साथियों कि आनंद केवल हंसना या मनोरंजन करना नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि आनंद एक ऐसी मानसिक स्थिति है जागृति जी, जिसमें हमारा मन शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अपने काम को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझकर करता है तो वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस करने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, जब वह अपने रिश्तों को समय देता है, जब वह स्वयं को स्वीकार करता है तब वह आनंद के और भी करीब पहुंच जाता है। हम देख सकते हैं कि आनंद भीतर से आता है, ये किसी महंगी वस्तु या बड़ी सफलता पर निर्भर नहीं करता जागृति जी।
1: जी हाँ।
0: कई बार तो एक कप चाय, परिवार के साथ समय बिताना, मित्रों के साथ हंसी मजाक और संगीत सुनना भी खुशी दे देता है। और साथ ही किसी जरूरतमंद की मदद करना भी मन को सच्चा आनंद दे सकता है साथियों।
1: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज कई लोग मानसिक तनाव से परेशान हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि काम को केवल जिम्मेदारी समझते हैं, खुशी का माध्यम नहीं समझते। जब व्यक्ति हर समय दबाव में काम करता है तो उसका मन और शरीर दोनों थक जाता है। इससे उसे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, निराशा बढ़ने लगती है। और यदि काम के बीच थोड़ा हास्य, संगीत, बातचीत, परिवार के साथ समय और मनपसंद गतिविधियां शामिल हो जाए तो जीवन हल्का और सुखद बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: आनंद व्यक्ति के मन को नई ऊर्जा देता है। जो लोग मुस्कुराते हुए काम करते हैं वे कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से सामना कर लेते हैं। कहा भी गया है कि जहाँ आनंद रहता है वहाँ तनाव टिक नहीं पाता।
0: जी।
1: और हमारे श्रोता साथियों से कशिश हम यही कहना चाहेंगे कि जब मन प्रसन्न होता है तब बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वैज्ञानिक शोध भी यही बताते हैं कि खुश मन से काम करने वाले लोग अधिक रचनात्मक होते हैं और सफल होते हैं। आनंद मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा देता है जिससे उसका ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि काम के साथ आनंद में जीने का क्या महत्व है, तो आगे भी ये बातें हम करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों के बीच संतुलन इतना जरूरी क्यों है।
1: बिल्कुल।
0: तो और भी बातें होंगी युवा साथियों से, लेकिन अभी क्यों ना एक प्यारा सा गीत हमारे दोस्तों को हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमने गीत से पहले आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, और हमने बात भी की थी कि काम के साथ आनंद में जीने का महत्व बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि कशिश हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो श्रोताओं, काम और आनंद का संतुलन शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। लगातार काम करने से थकान, सिर दर्द, अनिद्रा और कई सारी बीमारियां पैदा होती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जब व्यक्ति समय निकालकर आराम करता है, हंसता है, खेलता है और अपनी पसंद की चीजें करता है, तब उसका स्वास्थ्य और बेहतर होता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि योग, व्यायाम, संगीत, पुस्तक पढ़ना, प्रकृति के बीच समय बिताना, मित्रों से बातचीत करना, ये सब आनंद के अच्छे स्रोत हैं। ये गतिविधियां मन को शांति देती है, शरीर को ऊर्जा देती है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन आनंदमय जीवन की पहचान है।
1: बिल्कुल, अब यही अगर बात करें मानसिक स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी क्यों है, तो कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति लगातार काम करता रहता है और स्वयं को आराम या खुशी के लिए समय नहीं देता है, तो जागृति जी उसका मानसिक संतुलन इससे बिगड़ने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: जिससे तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। ऐसे में दोस्तों, आनंद जो है वो मन को हल्का करेगा, आपके तनाव को कम करेगा और आपको सकारात्मक सोचने की शक्ति भी प्रदान करेगा। अगर काम की गुणवत्ता की बात करें जागृति जी, तो जो व्यक्ति आनंद के साथ काम करेगा तो उसका काम अधिक प्रभावशाली भी होगा।
0: बिल्कुल,
1: और वहीं यदि मन थका हुआ है तो हम परेशान है साथियों, तो काम में गलतियां होना आम बात है। लेकिन जब व्यक्ति खुश होकर काम करता है तो उसकी रचनात्मकता इससे बढ़ती है और वह नए विचारों के साथ आगे भी बढ़ता है। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज बड़ी बड़ी कंपनियों में भी अपने कर्मचारियों के लिए मनोरंजन, योग, संगीत और आराम की सुविधाएं देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि खुश व्यक्ति बेहतर काम कर सकता है।
0: जी हाँ, और हम देखते हैं कि आज के युवा सफलता पाने की दौड़ में इतना व्यस्त हो गए कि वे खुद को समय देना भूल गए हैं। कई युवा मोबाइल, सोशल मीडिया और काम के दबाव में मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझना होगा कि केवल पैसा और पद ही जीवन नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे युवा साथियों को ये भी कहना चाहेंगे कि अपने शौक, खेल, संगीत, कला और परिवार के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। जब जीवन में संतुलन होगा तभी हम लंबे समय तक खुश और सफल रह पाएंगे।
1: जी हाँ।
0: कहा भी गया है कशिश की, सफल युवा वही है जो काम के साथ मुस्कुराना भी जानता है। महिलाएं घर और

0: व्यवहार दोनों की जिम्मेदारी निभाती है। कई बार वे अपने परिवार की चिंता में खुद की खुशी को भूल जाती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन महिलाओं के लिए भी आनंद और आत्मसंतोष उतना ही जरूरी है।
1: जी जी,
0: यदि महिलाएं अपने लिए थोड़ा समय निकाले, अपनी रुचियों को महत्व दे और मानसिक शांति बनाए रखे तो वे अधिक आत्मविश्वासी और ऊर्जा के साथ परिवार की देखभाल कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: जो खुद खुश रहना सीखती है वही परिवार में खुशियां बांटती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर हमारे युवा साथी असफलता को जीवन का हिस्सा मान ले तो भी वे अपने जीवन को आनंद के रूप में जी सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हर व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता, ये बात तो आप सभी जानते हैं, और असफलता जो है वो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा भी है जागृति जी।
0: बिल्कुल,
1: यदि असफलता आने पर व्यक्ति टूट जाए तो वह आनंद ही खो देगा, लेकिन वहीं यदि वह उससे सीख कर आगे बढ़े और कुछ नया अनुभव प्राप्त करे तो इससे वह मजबूत बनेगा। ऐसे में हमारे युवा साथियों को ये समझना चाहिए कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर होती है। साथ ही बात करें प्रकृति से जुड़ने की, तो दोस्तों प्रकृति जो है वो मन को शांति देती है। सुबह की ताजी हवा, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज और साथ ही खुला आकाश जो है वो मन को एक नई ऊर्जा देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं जागृति जी की तकनीक के बीच जी रहे युवा साथियों के लिए प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। इससे मानसिक तनाव उनका कम होगा और वे अपने मन में सकारात्मकता को भी लेकर आएंगे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। यदि हम सुबह की ताजी हवा, हरियाली और प्राकृतिक वातावरण से जुड़े तो जीवन में नई ऊर्जा और खुशी का अनुभव होता है।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है कि प्रकृति के करीब रहेंगे तो आनंद से भरपूर जीवन जी पाएंगे। काम और आनंद का संतुलन हमें बिठाना है श्रोता साथियों, जैसे कि हमें समय का सही प्रबंधन करना है, काम के बीच थोड़ा विश्राम लेना है, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना है, अपने शौक को भी जीवित रखना है, हर छोटी सफलता का आनंद लेना है, सकारात्मक सोच रखनी है, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना है, योग और ध्यान को अपनाना है। कहा गया है कशिश कि इन आदतों से जीवन संतुलित और खुशहाल बन सकता है। श्रोता साथी, आपसे कहना चाहेंगे कि काम जीवन का आवश्यक हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आनंद जीवन की आत्मा है। केवल काम करने से जीवन मशीन जैसा बन जाता है, जबकि आनंद उसे सुंदर और जीवंत बनाता है। और जो व्यक्ति काम और खुशी के बीच संतुलन बना लेता है कशिश, वही सच्चे अर्थों में सफल भी होता है और संतुष्ट कहलाता है।
1: बिल्कुल,
0: हमें अपने जीवन में मेहनत के साथ मुस्कान भी लानी है श्रोताओं, जिम्मेदारियों के साथ रिश्ते भी निभाने हैं और काम के साथ आनंद को भी स्थान देना है। यही स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन की कुंजी है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों को कि काम और आनंद दोनों जीवन के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं साथियों।
0: बिल्कुल,
1: यदि केवल काम होगा, आनंद नहीं होगा तो जीवन थका हुआ और बोझिल बन जाएगा, और यदि केवल आनंद होगा और बिना जिम्मेदारी के होगा तो जीवन लक्ष्यहीन हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए युवा साथियों, आपको चाहिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने मन की खुशी का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और रिश्तों का भी ध्यान रखें।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि दोस्तों जीवन केवल मंजिल पाने का नाम नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए सफर तय करने का भी नाम है।
0: तो जैसा कि कशिश, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: तो विदा तो जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से काम के बीच में आनंद को कैसे ढूंढना है, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मारू नाम गिल्ली है ने मुँ मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नु दूध ज पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानु दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागुर रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज का हमारा विषय रहेगा आपसे बातचीत का, बुजुर्गों को समय देना क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के घर में बुजुर्ग लोग तो रहते ही है, और कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, तो उनका समय भी नहीं निकलता और वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम यही बताना चाहेंगे कि हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको हम समय किस तरह से दें, क्योंकि समय मिलना तो बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम जानेंगे।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, बातें कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ हम हमारे दोस्तों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है, बुजुर्गों को समय देना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि हम देखते हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने ही परिवार के लिए समय कम पड़ने लगा है। मोबाइल हो गया, इंटरनेट, नौकरी, पढ़ाई और सामाजिक भागदौड़ के बीच सबसे अधिक उपेक्षित यदि कोई हो रहा है तो वो है हमारे बुजुर्ग। वही बुजुर्ग जिन्होंने अपने जीवन का हर पल परिवार की खुशियों के लिए समर्पित कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: आज अपने ही घर में अकेलापन का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में समझना बहुत जरूरी है श्रोता साथियों कि बुजुर्गों को समय देना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, मानवता और संवेदनशीलता की पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि किसी भी परिवार और समाज की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव होता है और यह अनुभव हमारे बुजुर्गों के पास होता है। बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े लोग नहीं होते बल्कि वे जीवन की अनगिनत सीख, संघर्ष, परंपरा और संस्कार अपने भीतर समेटे हुए होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार और समुदाय को संभालने में बिताया होता है। लेकिन दुख की बात यह है जागृति जी कि आज तेजी से बदलती जीवन शैली, व्यस्त दिनचर्या और मोबाइल की दुनिया ने बुजुर्गों को धीरे धीरे अकेला कर दिया है। आज कई घरों में बुजुर्गों की जरूरत तो महसूस की जाती है लेकिन श्रोता साथियों उन्हें समय कम दिया जाता है। लोग यह सोचते हैं कि पैसे और सुविधाएं दे देना ही काफी है, जबकि सच यह है जागृति जी कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत अपनापन, बातचीत और साथ की होती है। उनके लिए कुछ समय निकालना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सम्मान, संवेदना

0: भावना और इंसानियत का प्रतीक है।
1: जी हाँ, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को अंजलि हम कहना चाहेंगे कि बुजुर्ग परिवार की जड़ होते हैं। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ मजबूत होती है तो पूरा वृक्ष सुरक्षित और हरा भरा रहता है।
0: बिल्कुल,
1: उसी प्रकार परिवार में बुजुर्ग का सम्मान और साथ परिवार को मजबूती देता है। उनके अनुभव, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है श्रोताओं, उस घर में सुख और संस्कार दोनों बसते हैं। हम देखते हैं कि बुजुर्गों ने अपने जीवन में अनेक कठिनाई देखी होती है अंजलि। उन्होंने संघर्ष किया होता है, परिवार को खड़ा किया होता है। वे जीवन के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब युवा पीढ़ी किसी समस्या में उलझ जाती है तब बुजुर्ग अपने अनुभव से सही मार्ग दिखा सकते हैं। यदि हम उनके साथ समय बिताएंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो हमें जीवन की सच्चाइयों को समझने का अवसर मिलेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, हर बुजुर्ग अपने साथ जीवन का लंबा अनुभव लेकर चलते हैं। उन्होंने कठिन समय जो देखा होता है, संघर्ष किए होते हैं और कई परिस्थितियों से सीख हासिल की होती है। श्रोता साथियों, उनकी बातें और उनके अनुभव परिवार को सही दिशा देते हैं, बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, कठिन समय में धैर्य रखना सिखाते हैं और जीवन की गलतियों से बचने में मदद करते हैं। बुजुर्गों का अनुभव किताबों में नहीं मिलता, उनकी सीख जीवन की सच्चाई से जुड़ी होती है। बढ़ती उम्र के साथ इंसान शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है, ऐसे समय में उन्हें केवल दवाइयों की नहीं बल्कि भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब परिवार के लोग उनसे बातें करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं तो बुजुर्ग खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। लेकिन जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो वे अकेलापन भी महसूस करने लगते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज अनेक बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। बच्चे पढ़ाई या नौकरी के कारण दूर चले जाते हैं, घर में माता पिता अकेले रह जाते हैं। कई बार बच्चे साथ रहते हुए भी अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बुजुर्गों से बात तक नहीं कर पाते। इससे बुजुर्ग मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं रही। ये भावना उनके मन में दुख, निराशा और अवसाद पैदा करती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, यदि हम प्रतिदिन कुछ समय उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी भावनाओं को समझें तो उनका अकेलापन काफी हद तक कम हो सकता है।
0: जी जी,
1: कहा गया है कि थोड़ा सा समय बुजुर्गों को देना चाहिए, उनके चेहरे की मुस्कान वापस लौट आएगी। तो श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे घर में जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो केवल परिवार के सदस्य नहीं होते, वे संस्कारों के शिक्षक भी होते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार सबसे पहले दादा दादी नाना नानी से मिलते हैं।
0: जी जी,
1: उनकी कहानियाँ, उनके जीवन के अनुभव और उनकी सीख बच्चों के व्यक्तित्व को बेहतर बनाते हैं। आज जब बच्चे मोबाइल और टीवी की दुनिया में खोते जा रहे हैं तब बुजुर्ग ही उन्हें परिवार, रिश्तों और संस्कृति का महत्व समझा सकते हैं। बुजुर्गों की सीख बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से हमें बुजुर्गों को समय देना जरूरी होता है। तो बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम जान पा रहे थे कार्यक्रम के माध्यम से कि किस तरीके से बुजुर्ग जो हैं वो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं और किस तरीके से हमें उन्हें समय देना चाहिए। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि संयुक्त परिवारों में पहले दादा दादी और बुजुर्ग परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़े रखते थे। वे बच्चों को कहानियां सुनाते थे, परिवार में शांति बनाए रखते थे, रिश्तों को संभालते थे और परंपराओं और संस्कारों को आगे बढ़ाते थे। उनकी उपस्थिति जागृति जी घर में अपनापन पैदा करती थी। आज जब परिवार छोटे होते जा रहे हैं तब बुजुर्गों का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज कई जगह बुजुर्गों को बोझ समझा जाने लगा है। कुछ लोग उन्हें निर्णय से दूर रखते हैं, उनकी जरूरतों को महत्व नहीं देते। ये केवल पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक समस्या है। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान कम होने लगे वहाँ श्रोता साथियों संवेदनशीलता भी कम होने लगती है, क्योंकि जो समाज अपने अनुभव और परंपरा का सम्मान नहीं करता वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है।
1: जी हाँ, और इसी के साथ श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति में सदैव बुजुर्गों का सम्मान किया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और परंपराओं में माता पिता और बुजुर्गों को देवताओं के समान माना गया है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव का संदेश हमें यही सिखाती है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का आदर करता है उसे समाज में भी सम्मान मिलता है। कहा गया अंजलि कि संस्कार वही सच्चे हैं जहाँ बुजुर्गों के चरणों का सम्मान हो।
0: बिल्कुल,
1: बुजुर्गों को समय देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वे भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार उन्हें बीमारी, कमजोरी और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में परिवार का साथ उनके लिए सबसे बड़ी दवा माना जाता है। जब बच्चे या परिवार के सदस्य उनके पास बैठते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनकी मदद करते हैं, तब उन्हें महसूस होता है अंजलि कि वे अकेले नहीं हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथी आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्यार और अपनापन बुजुर्गों की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम देखते हैं कि समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये स्थिति चिंता का विषय है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही माता पिता अपने अंतिम समय में अकेले जीवन बिताने को मजबूर हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये केवल सामाजिक समस्या नहीं है श्रोताओं, बल्कि संवेदनाओं के कमजोर होने का संकेत है। यदि हर परिवार अपने बुजुर्गों को समय और सम्मान दे तो शायद किसी भी बुजुर्गों को वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता न पड़े।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि बुजुर्गों के साथ समय कैसे बिताएं। तो श्रोता साथियों रोज कुछ समय उनसे बातचीत करें, उनकी पुरानी यादें और अनुभव सुनें, बच्चों को उनके साथ बैठने के लिए प्रेरित करें, उनके स्वास्थ्य और जरूरतों का ध्यान रखें, उन्हें निर्णयों में शामिल करें, उनके जन्मदिन को और खास दिनों को महत्व दें। छोटी छोटी बातें भी बुजुर्गों को बहुत खुशी देती है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की जड़ें हैं। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया होता है, इसलिए उनका सम्मान और साथ ही हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान भी है। उन्हें समय देना केवल कुछ मिनट साथ बैठकर बात करना नहीं बल्कि यह एहसास दिलाने की प्रक्रिया है कि वे आज भी परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी मुस्कान, अनुभव, आशीर्वाद किसी भी भौतिक सुविधा से अधिक मूल्यवान होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकाल कर अपने बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनकी बातें सुने, उनकी भावनाओं को समझे और उन्हें अकेलापन महसूस न होने दें। क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग खुश रहते हैं वहाँ संस्कार, अपनापन और शांति बनी रहती है, और जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है वह समाज हमेशा मजबूत और संवेदनशील बना रहता है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और हमें ये भी समझना होगा कि एक दिन हम भी बुजुर्ग होंगे। जिस प्रकार का व्यवहार हम आज अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे आने वाली पीढ़ी वही सीखेगी।
0: बिल्कुल,
1: यदि बच्चे अपने माता पिता को दादा दादी का सम्मान करते देखेंगे तो वे भी भविष्य में अपने माता पिता का आदर करेंगे। इस प्रकार बुजुर्गों को समय देना केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं श्रोताओं बल्कि भविष्य के संस्कारों की नींव है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि बुजुर्ग हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर श्रोताओं। उनका अनुभव, प्रेम, त्याग और आशीर्वाद हमें जीवन में सही दिशा देते हैं। उन्हें समय देना केवल उनके लिए नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक है। यदि हम अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुने, उन्हें सम्मान दे तो उनका जीवन खुशियों से भर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: समाज की सच्ची प्रगति वही है जहां बुजुर्ग सम्मान और प्रेम के साथ जीवन जी सके। बुजुर्ग किसी घर का बोझ नहीं होते श्रोताओं, वे उस घर की पहचान होते हैं। उनकी मुस्कान में परिवार की खुशी छिपी होती है। इसलिए हम सबके मन में ये बात जम जानी चाहिए कि अपने बुजुर्गों को केवल सुविधा नहीं बल्कि अपना समय, सम्मान और प्रेम भी देंगे। क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग खुश रहते हैं वहाँ भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बुजुर्गों का सम्मान करिए, संस्कारों से ही परिवार रोशन होते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि बुजुर्गों को दिया गया समय कोई एहसान नहीं बल्कि हमारी इंसानियत और संस्कारों की पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी बरगद की छांव जैसी होती है जो हर पीढ़ी को सुरक्षा, सीख और अपनापन देती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, बुजुर्गों की बातें कभी पुरानी नहीं होती, उनमें जीवन को सही दिशा देने वाला अनुभव छुपा होता है। बुजुर्ग घर का वह अनुभव है जिनके साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी जीवन की बड़ी सीख बन जाता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की कि बुजुर्गों का सम्मान क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो जाने से पहले सुनवा देते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाघधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

साथियों, भीड़ में चलते चलते कभी खुद को पीछे छोड़ देते हैं, दूसरों की आवाज सुनते सुनते अपनी ही आवाज भूल जाते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम हर रोज एक नया विषय लेकर हाजिर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो शायद हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं छुपा है। जानेंगे कि क्यों कई बार हम खुद से दूर हो जाते हैं। हम दिन भर लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम महसूस करते हैं कि कुछ तो है जो छूट गया है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और यह भी सच है कि कई बार हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। जानेंगे आज हम कार्यक्रम के माध्यम से कि क्यों कई बार हम खुद से दूर हो जाते हैं। बातें इस विषय पर ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हम बात करेंगे कि क्यों कई बार हम खुद से दूर हो जाते हैं। श्रोता साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि खुद से दूरी तब बढ़ती है जब हम दूसरों के करीब होने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। जी हाँ, यह दूरी अचानक नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है। जब हम अपनी खुशी डालते हैं, दूसरों की उम्मीद में खुद को ढालते हैं, लोग क्या कहेंगे में उलझ जाते हैं, तब हम खुद को थोड़ा थोड़ा दूर करने लगते हैं। बचपन में श्रोता साथियों, हम जैसे थे, खुलकर हंसते थे, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी, तुलना बढ़ी, डर बढ़ा और हमने खुद को बदलना शुरू कर दिया। ऐसा मत करो, वैसा बनो, और इसी बीच असली हम कहीं पीछे छूट गया। अक्सर दोस्तों, डर हमें रुकता है। वो कहता है हमें कि अगर हम असफल हो गए तो तुलना हमें कमजोर कर देती है। वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो मुझसे बेहतर है, और इन दोनों के बीच हम खुद को कम आंकने लगते हैं। दोस्तों, कहना चाहूंगी कि जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तब हम अपनी पहचान खोने लगते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि सब खुश रहें, यही ठीक है, लेकिन इस कोशिश में हम खुद को नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी पसंद छोड़ देते हैं, अपनी आवाज दबा देते हैं और धीरे धीरे हम खुद से दूर हो जाते हैं। हम दिन भर दूसरों को बहुत सुनते हैं, लेकिन खुद से बात कब करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने आखिरी बार कब खुद से पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे दोस्तों हम, तो हम खुद से जुड़ेंगे कैसे? क्योंकि किसी ने कहा है कि खुद को सुनना ही खुद से जुड़ने की शुरुआत होती है। अब बात आती है कि वापस कैसे आए हम खुद के पास। तो दोस्तों, खुद के लिए थोड़ा समय हमें निकालना है, पुराने शोक, छोटी खुशियां हमें वापस लानी है। और हर बार दूसरों को खुश करना जरूरी नहीं है, ना कहना भी हमें सीखना होगा, और अपने मन की बात हमें सुननी है। जब हम खुद को समय देते हैं, तब हम खुद को वापस पाते हैं। कहते हैं ना कि खुद को ढूंढने निकले थे, दूसरों में उलझते चले गए, अपनी आवाज सुननी थी हमें पर शोर में खोते चले गए। अब जब ठहर कर देखा खुद को, तो समझ आया ये हाल, सब कुछ तो साथ था, बस खुद ही साथ नहीं थे। तो साथियों, खुद से दूर होना एक सामान्य बात है, लेकिन वहीं रुक जाना सही नहीं है। हमें वापस आना होगा, खुद को फिर से पहचानना होगा, क्योंकि अगर हम खुद के साथ नहीं हैं, तो दुनिया के साथ होने का क्या मतलब है। जिंदगी तभी पूरी लगती है दोस्तों, जब हम खुद से जुड़े रहते हैं। इसलिए चलो फिर खुद से मिलते हैं, थोड़ा रुकते हैं और थोड़ा समझते हैं। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम में मैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहूंगी। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हम बहुत सी बार खुद से दूर होते चले जाते हैं। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि कई बार हम एकदम से नहीं बदलते, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी असली पहचान खो देते हैं, और जब ध्यान आता है तब हम खुद को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम काम कर लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार व्यस्त रहना खुद से भागने का एक तरीका भी बन सकता है, क्योंकि जब हम अपने दुख, गुस्से और डर को व्यक्त नहीं करते, वे अंदर जमा होकर हमें खुद से दूर कर देते हैं। क्योंकि जो भावनाएं कहीं नहीं जाती है दोस्तों, वो भीतर दीवार बन जाती है। हम दूसरों की भूमिका निभाते निभाते कहना चाहूंगी दोस्तों कि अपनी असली पहचान का सवाल ही भूल जाते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किससे खुशी मिलती है, अगर ये सवाल नहीं पूछे हमने खुद से तो दूरी बढ़ती ही जाएगी। हर समय खुद को साबित करने की कोशिश हमें दूसरों के हिसाब से जीने पर मजबूर कर देती है, और इस चक्कर में हम अक्सर अपने असली स्वरूप को खो देते हैं। हमारे अंदर हमेशा एक आवाज होती है जो सही गलत का हमें संकेत देती है, लेकिन जब हम उसे बार बार अनदेखा करते हैं तब खुद से दूरी बढ़ती है। किसी ने कहा है कि जब हम अपनी आवाज को अनसुना करते हैं तब दुनिया की हर आवाज भारी लगने लगती है। थका हुआ मन खुद से जुड़ नहीं पाता। जब हम खुद को आराम नहीं देते दोस्तों, तो हम अपने अंदर की शांति से दूर हो जाते हैं। जब हम खुद को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए, तब हम खुद से दूर भागने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, यही सोच दूरी बनाती है। हम सोचते हैं रोना नहीं चाहिए, कमजोर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सच यह है कि इंसान को इंसान बने रहने देना भी जरूरी है। यह तो हम अतीत में उलझे रहते हैं, इसलिए हर समय मजबूत बनने का दबाव हमें खुद पर नहीं डालना है। इसी के साथ हमें वर्तमान में रहना है। या तो हम अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में वर्तमान को जीना भूल जाते हैं, और यहीं से दूरी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, खुद से दूरी तब नहीं बनती जब हम गिरते हैं, बल्कि तब बनती है जब हम खुद को उठाना छोड़ देते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा होता है उसे भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगता। खुद को खोना सबसे आसान है और खुद को पाना सबसे बड़ी जीत। हम दुनिया से नहीं, खुद से भागते हैं और खुद को ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमेशा खुद से जुड़े रहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाकर रखिए। हमारे लिए साथियों यह भी समझना जरूरी है, खुद से दूर होना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली स्थिति है। यह तब शुरू होती है जब हम अपनी प्राथमिकताओं से समझौता करने लगते हैं, अपनी भावनाओं को टालते हैं, अपने भीतर की सच्चाई को सुनने के बजाय बाहरी शोर को महत्व देने लगते हैं। इस दूरी का सबसे बड़ा असर ये होता है दोस्तों कि जीवन भले ही चलता रहता है, पर उसमें संतोष और आत्मिक जुड़ाव जो होना चाहिए वो कम होने लगता है। खुद से जुड़ा वही आधार है श्रोता साथियों, जिस पर जीवन की सारी मजबूती टिकी होती है। जब व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं और जरूरतों को समझता है, तभी वह सही निर्णय ले पाता है और जीवन को संतुलन के साथ जी पाता है। इसके विपरीत जब यह जुड़ाव कमजोर होता है तो व्यक्ति बाहर से सब कुछ सही होते हुए भी भीतर से थोड़ा थोड़ा अधूरा महसूस करता है। इसलिए दोस्तों, जरूरी यह नहीं कि हम दुनिया से दूरी बनाएं, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की दूरी को पहचानें और उसे कम करने की कोशिश करें। खुद से फिर से जुड़ना कोई बड़ा बदलाव नहीं मांगता, बल्कि छोटी छोटी जरूरतों से शुरुआत होती है। अपने मन की बात सुनना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, अपने लिए थोड़ा समय निकालना, यही छोटे कदम धीरे धीरे हमें फिर से अपने करीब ले आते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खुद से जुड़ाव एक बार हासिल करके खत्म होने वाली चीज नहीं होती है। यह तो एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हम जीवन भर बनाकर रख सकते हैं। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम अपने भीतर के संवाद को जीवित रखते हैं ना दोस्तों, तो हम कभी पूरी तरह खुद से दूर नहीं होंगे। इसलिए कहना चाहेंगे दोस्तों कि खुद से जुड़ाव ही वह शक्ति है जो जीवन को सिर्फ चलने नहीं, सही मायने में जीने लायक बनाती है। जो व्यक्ति खुद के साथ खड़ा रहना सीख लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं रहता।
तो दोस्तों यह था हमारा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी और ढेर सारी हो गई है और अब मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर से जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, बागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई प्यारी प्यारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध कर कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात ने शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
4: होवे, सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
3: होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
6: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
5: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा हमारी बातचीत रहने वाली है हमारे श्रोता साथियों से। जीवन में उजाला सामान से नहीं बल्कि समझदारी से आता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज का समय भौतिक सुख सुविधाओं का समय माना जाता है और हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अधिक से अधिक धन, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, नए मोबाइल और आधुनिक वस्तुएं जुटाने में लगा रहता है।
0: बिल्कुल,
1: लोगों को लगता है कि जितना अधिक सामान होगा उतनी अधिक खुशियां होंगी, सम्मान मिलेगा, लेकिन क्या वास्तव में केवल वस्तुएं ही जीवन में उजाला ला सकती है श्रोताओं? क्या धन और सामान से ही मन की शांति, रिश्तों की मिठास और जीवन का सच्चा सुख पाया जा सकता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें जीवन के अनुभव से मिलता है मनीषा।
0: जी हाँ।
1: कि जीवन में असली उजाला सामान से नहीं बल्कि समझदारी, अच्छे विचार और सही व्यवहार से आता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा भी गया है कि सामान केवल घर भरता है लेकिन समझदारी पूरा जीवन रोशन करती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: जी हाँ।
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके थे कि आज हम बात करने वाले हैं, जीवन में उजास सामान से नहीं बल्कि समझदारी से आता है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, हम देखते हैं कि आज का समय सुविधा और चमक दमक का समय माना जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक सुख सुविधाओं और वस्तुओं को जुटाने में लगा हुआ है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, किसी के पास आधुनिक मोबाइल और तरह तरह की सुविधाएं हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन क्या केवल सामान और सुविधाएं ही जीवन को सच्चा दुख सुख और उदास ला सकती है? साथियों, क्या जिन लोगों के पास बहुत धन और वस्तुएं हैं वे हमेशा खुश रहते हैं? यदि ऐसा होता तो दुनिया में दुख, तनाव, अकेलापन और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती। श्रोता साथियों, सच्चाई यह है कि जीवन में वास्तविक उजास यानी कि खुशी, संतोष, शांति और सकारात्मक केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि समझदारी, सही सोच, अच्छे व्यवहार और संतुलित जीवन से आती है।
1: जी हाँ।
0: जीवन को सुंदर बनाने के लिए केवल साधन नहीं साथियों बल्कि सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। समझदारी वह रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है।
1: जी
0: यह
1: हाँ।
0: इंसान को सही और गलत में अंतर करना सिखाती है और जीवन को सरल और सुखद और सार्थक बनाती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि समझदारी वो शक्ति है जो मनुष्य को सही और गलत का अंतर समझाती है, जैसा कि अभी आपने कहा था।
0: जी हाँ।
1: यह हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सिखाती है और जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी देती है। जिसके पास समझदारी होती है वो कम साधनों में भी संतुष्ट और खुश रहता है।
0: बिल्कुल।
1: वहीं श्रोता साथियों, जिसके पास केवल धन और वस्तुएं हो लेकिन समझ न हो, उसका जीवन अक्सर तनाव, अहंकार और असंतोष से भर जाता है।
0: बिल्कुल।
1: कहा भी गया है कि अकल का दीपक जल जाए तो अंधेरे खुद दूर हो जाते हैं। आज समाज में कई लोग अपनी पहचान महंगे कपड़े, दिखावे से बनाना चाहते हैं। वे भूल जाते हैं श्रोता साथियों कि बाहरी चमक कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन स्थायी सम्मान केवल अच्छे व्यवहार और समझदारी से मिलती है।
0: जी हाँ।
1: एक समझदार व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है, विनम्र रहता है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जानता है। ऐसे लोग हर जगह सम्मान पाते हैं। मनीषा
0: जी,
1: हम देखते हैं कि दिखावा तो पल भर चमकता है, लेकिन जो समझदारी होती है वो समझदारी जीवन भर हमारे जीवन में दमकती है। जीवन में ऐसी कई सारी परेशानी आती है, ऐसी कई सारी परिस्थितियां होती है हमारे साथ जब पैसा और सामान किसी काम के नहीं आते।
0: जी हाँ।
1: हम देखें तो बीमारी, दुख, तनाव या रिश्तों के टूटने के

0: समय इंसान को समझदारी, धैर्य और अच्छे लोगों के साथ साथ का साथ जरूरी होता है। यदि किसी परिवार में प्रेम, सम्मान और समझदारी हो तो छोटा सा घर भी स्वर्ग जैसा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि बड़े महल में लड़ाई, घमंड और स्वार्थ हो तो वहाँ सुख भी नहीं टिकता।
1: इसलिए
0: श्रोता साथियों, कहा गया है कि जहाँ समझदारी का वास होता है वहीं सच्चे सुख का प्रकाश होता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज समाज में कई लोग साधनों के पीछे भागते भागते जीवन में अपने जीवन में रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को खो देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वहीं कुछ लोग सीमित साधनों में भी श्रोता साथियों मुस्कुराकर जीवन बिताते हैं, क्योंकि उनके पास समझदारी ही, संतोष ही और जीवन को जीने का सही तरीका है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि जीवन में उजास सामान से नहीं बल्कि समझदारी से आता है। साथ ही जागृति जी, हम देखते हैं कि समझदारी का अर्थ केवल पढ़ाई लिखाई या डिग्री तक ही नहीं है। समझदारी का अर्थ है श्रोता साथियों सही समय पर सही निर्णय लेना, परिस्थितियों में, हर कठिन परिस्थितियों में हमें धैर्य बनाए कर रखना है। साथ ही रिश्तों की अहमियत को हमें समझना है।
0: बिल्कुल।
1: जरूरत और लालच में अंतर करना सीखना है। साथ ही हमें अपनी सीमाओं को पहचान कर संतुलित जीवन जीना है। श्रोता साथियों, समझदार व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीखता है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता है और दूसरों के प्रति सम्मान और संवेदनाएं भी बना के रखता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही साथियों, समझदार इंसान भीतर से मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य भी समझदारी विकसित करना है। केवल डिग्री हासिल करना ही शिक्षा नहीं है श्रोताओं। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरों का सम्मान करना, सही निर्णय लेना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं सीख पाएगा तो उसकी शिक्षा अधूरी है। हम देखते हैं कि समझदारी मनुष्य को मानवता की राह दिखाती है। ये उसे स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचने की प्रेरणा देती है।
1: बिल्कुल।
0: शिक्षा वही अच्छी है जो इंसान को समझदार बनाए श्रोताओं। आज हम देखते हैं कि डिजिटल युग में समझदारी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
1: जी बिल्कुल।
0: सोशल मीडिया पर लोग दिखावे की दुनिया में खोते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे की चमक दमक देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर चीज सच नहीं होती। वो अपनी वास्तविक जिंदगी को महत्व देता है और दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से जीवन में उजास सामान से नहीं बल्कि समझदारी से आता है, इस विषय को लेकर बातें जारी हैं और आगे भी हम ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: श्रोताओं, हम इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि हमारी बातचीत चल रही थी कि जीवन में उजाला सामान से नहीं, समझदारी से आता है।
1: बिल्कुल।
0: एक छोटी सी कहानी के माध्यम से श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि एक गांव में दो मित्र रहते थे। पहला मित्र बहुत अमीर था, मनीषा, और उसके घर में हर प्रकार के आधुनिक सामान थे।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा मित्र साधारण किसान था जिसके पास ज्यादा धन नहीं था। एक दिन बहुत भारी तूफान आया, अमीर व्यक्ति अपने महंगे सामान को बचाने लगा लेकिन डर और चिंता से परेशान हो गया।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी ओर श्रोता साथियों, किसान ने धीरे और समझदारी से अपने परिवार और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। तूफान के बाद अमीर व्यक्ति का सामान तो बच गया लेकिन उसका मन टूट गया। किसान के पास सामान कम था लेकिन उसकी समझदारी ने उसके परिवार और खुशियां बचा ली।
1: बिल्कुल।
0: तभी गांव वालों ने कहा कि असली उजाला धन से नहीं, बुद्धि और समझ से आता है।
1: जी हाँ
0: श्रोताओं, धन संकट में डगमगा सकता है, समझदारी हर हाल में हमारे साथ निभाती है। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि समझदारी केवल बड़े निर्णयों में नहीं होती बल्कि छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है।
1: जी हाँ।
0: जैसे समय का सही उपयोग करना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, गलतियों से सीख, ये सारी बातें समझदार व्यक्ति की पहचान होती है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे लोग जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मनीषा, और स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। कहा गया है श्रोता साथियों कि जो स्वयं को संभालना सीख गया उसने जीवन को जीत लिया।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सुख सुविधाएं चाहता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जितनी सुख सुविधाएं बढ़ती जाती हैं उतनी चिंता भी बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल।
1: इसका कारण यह है कि सामान केवल बाहरी सुविधाएं दे सकता है साथियों, भीतर की शांति नहीं। साथ ही हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक मोबाइल है तो वह दूसरे मोबाइल की चाहता है, एक के पास गाड़ी है तो वह दूसरी गाड़ी की इच्छा करता है। इच्छाएं यही इच्छाओं का सिलसिला जागृति जी यूं चलता रहता है और वो कभी समाप्त नहीं होता। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि हमेशा व्यक्ति असंतुष्ट रहने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि जब व्यक्ति केवल वस्तुओं के आधार पर खुशी खोजता है तब वह दूसरों से तुलना करने लगता है। किसी के पास अधिक धन देखकर वह अपने दुख को आंकने लगता है। साथ ही यह तुलना तनाव में बदल जाती है, हमारे जीवन में दुख आने लगते हैं और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि महंगे सामान कुछ समय के लिए हमें आकर्षित कर सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे जागृति जी कम होता जाता है।
0: जी हाँ।
1: इंसान को लंबे समय तक खुश रहने के लिए रिश्ते, प्रेम और सामान और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल। हम देखते हैं कि समझदारी केवल बड़े निर्णय में नहीं होती, जैसा कि हमने पहले कहा था मनीषा, परिवार और समाज में भी समझदारी का बहुत महत्व होता है। यदि माता पिता समझदारी से बच्चों को संस्कार दे, शिक्षक धैर्य पूर्वक शिक्षा दे और युवा सही दिशा में मेहनत करे तो पूरा समाज प्रगति कर सकता है।
1: जी हाँ।
0: केवल संसाधनों की अधिकता समाज को महान नहीं बनाती श्रोताओं, बल्कि समझदारी, ईमानदारी और सहयोग की भावना समाज को मजबूत बनाती है। समझदार समाज ही उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। आज हम देखते हैं कि पर्यावरण संकट भी हमें यही सीख देता है कि केवल अधिक संसाधनों का उपयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। यदि मनुष्य प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता रहेगा तो एक दिन वही सुविधाएं उसके लिए संकट बन जाएगी।
1: जी हाँ।
0: समझदारी इसी में है कि हम भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले और आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखे।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, जीवन में कई लोग बहुत साधारण परिस्थितियों से उठकर महान बनते हैं। उनके पास शुरुआत में न धन होता है और न ही बड़े साधन होते हैं, लेकिन मनीषा, उनकी समझदारी, मेहनत और सकारात्मक सोच उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। वहीं कुछ लोग बहुत सुविधाओं के बावजूद गलत निर्णयों के कारण अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इससे स्पष्ट होता है श्रोता साथियों कि सफलता का आधार केवल साधन नहीं है बल्कि सही सोच और समझदारी है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि समझदार व्यक्ति अपनी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करना जानता है।
0: बिल्कुल।
1: वह जानता है कि हर चीज पाना जरूरी नहीं है। संतोष का भाव जीवन को हल्का और खुशहाल बनाता है साथियों। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष से जीना सीख जाता है उसके जीवन में हमेशा उजाला बना रहता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हम देखते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन रिश्ते होते हैं। समझदार व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और समाज के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करता है। वह छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते खराब नहीं करता है।
0: जी हाँ।
1: आज जागृति जी, हम देखते हैं कि कहीं परिवारों में सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन अपनापन नहीं है। इसका कारण समझदारी की कमी है साथियों। यदि परिवार में एक दूसरे को समझने की भावना हो हो तो छोटा सा भी कार्य जो होता है उससे हमें खुशी मिल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हम देखते हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी सफलता मिलती है साथियों तो कभी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। समझदार व्यक्ति कठिन समय में घबराने के बजाय हमेशा धैर्य बनाकर और सोच समझकर कार्य करता है।
0: जी हाँ।
1: समझदारी इंसान को टूटने नहीं देती और हर समस्याओं का समाधान वो निकाल लेता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, दूसरों के जीवन में रोशनी अगर हम बांटेंगे तो हमारा जीवन खुद भी चमक उठेगा। ये कहा जा सकता है कि जीवन की असली रोशनी बाहरी वस्तु से नहीं आती। धन और सामान केवल सुविधाएं दे सकते हैं हमें, लेकिन सच्चा सुख तो सम्मान और शांति समझदारी से ही प्राप्त होती है।
1: जी हाँ।
0: समझदार व्यक्ति हर परिस्थिति में उम्मीद ढूंढ लेता है मनीषा, रिश्तों को संभालता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। इसीलिए श्रोताओं आपसे कहना चाहेंगे कि हमें केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और निर्णयों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि समझदार व्यक्ति के लिए मानसिक शांति भी बहुत जरूरी होती है। आज मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या बन चुका है, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति अपने मन को संतुलित बनाना सीख जाता है, साथ ही वह क्रोध और ईर्ष्या और नकारात्मक सोच से भी दूर रहता है। जिसके मन में शांति होती है साथियों, उसके जीवन में हमेशा उजास बना रहता है। साथ ही हम देखते हैं कि समझदार व्यक्ति यह जानता है कि वह समय का मूल्य समझता है। वह समय को व्यर्थ बातों में नहीं गवाता है, वह अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। साथ ही वह समय का सही उपयोग करता है और अपने जीवन को सफलता और संतोष

0: इंसान की पहचान उसके सामान से नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों से बनती है।
1: जी हाँ।
0: और कहा गया है कि महान वही बनता है जिसकी सोच ऊंची होती है, सामान नहीं। इसी प्रकार श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि आज दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ साधारण जीवन जीने वाले लोग अपनी समझदारी और अच्छे व्यवहार के कारण समाज में बड़ा सम्मान पाते हैं।
1: जी हाँ।
0: वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, सुविधाएं हैं, फिर भी ये तनाव में रहते हैं, अकेलेपन के शिकार है, असंतोष से घिरे रहते हैं मनुष्य। इसका सबसे बड़ा कारण यही है श्रोता साथियों कि उन्होंने जीवन में वस्तुओं को अधिक महत्व दिया लेकिन रिश्तों और समझदारी को पीछे छोड़ दिया।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को बताएं कि सादगी और समझदारी का क्या संबंध है। तो साथियों, हम देखते हैं कि सादगी हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
0: बिल्कुल।
1: समझदार व्यक्ति दिखावे के बजाय सादगी को महत्व देता है। वह समझता है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजों की नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और अच्छे चरित्र की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं जागृति जी कि महात्मा गांधी का जीवन भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके पास भले ही भौतिक वस्तुएं कम थी लेकिन उनके सोच और समझदारी ने हमारे पूरे देश में रोशनी फैला दी। साथ ही हम देखते हैं कि गांवों में आज भी कई लोग सीमित साधनों में खुश रहते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं, रिश्तों को महत्व देते हैं और साथ ही मिलजुल कर जीवन बिताते हैं। उनके जीवन में दिखावा कम और अपनापन अधिक होता है। श्रोता साथियों, यह हमें सिखाता है कि खुशी केवल धन और वस्तुओं में नहीं बल्कि सरल और समझदारी भरे जीवन जीने में है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मनीषा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि हमारी बातचीत चल रही थी कि जीवन में उजाला सामान से नहीं बल्कि समझदारी से आता है, तो श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे, एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे कि जैसे कि गांव में कई किसान ऐसे होते हैं जो कम साधनों में खुश रहते हैं क्योंकि वे समझदारी से जीवन जीना जानते हैं, वे परिवार को समय देते हैं, मेहनत करते हैं और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी ओर कुछ लोग शहर में सारी सुविधाएं होने के बावजूद तनाव और अकेलेपन का जीवन जीते हैं। इससे सीख मिलती है श्रोता साथियों की सुख का संबंध वस्तुओं से कम और मन की स्थिति से अधिक होता है। जिसके विचार समृद्ध है वही वास्तव में सबसे अमीर है।
1: जी
0: आज हम देखते हैं मनीषा कि आज की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता होगी कि जीवन का लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है श्रोताओं, बल्कि इकट्ठा करना भी है। यदि इंसान समझदारी, ईमानदारी और संवेदनशीलता खो देते हैं तो उनका जीवन भी अंदर से खाली हो जाता है। इसलिए हमें अपने भीतर संस्कार, सही सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने होंगे। अगर यही गुण हमें क्योंकि यही गुण हमें सफल बनाएंगे और ये गुण नहीं होंगे तो हम जीवन में अंधकार की ओर चले जाएंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि सामान की चमक कुछ पल की होती है, समझदारी की रोशनी पूरी उम्र हमारे साथ रहती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज युवा वर्ग सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव में आ रहे हैं। लोग दूसरों की चमक देखकर खुद को पीछे समझने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन युवाओं को यह समझना होगा कि जीवन की असली सफलता केवल महंगी चीजों में नहीं होती। युवाओं को समझना होगा कि उन्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा, दिखावे से बचना होगा और रिश्तों को सम्मान देना होगा।
0: बिल्कुल।
1: मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और साथ ही समय और धन का भी सही उपयोग करना होगा। यदि युवा समझदारी से जीवन जीना सीख जाएंगे जागृति जी, तो उनका भविष्य उज्जवल बन जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हम देखते हैं कि परिवार तभी खुशहाल बनता है जब उसमें समझदारी हो। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझे, धैर्य रखे और संवाद बनाए रखे जागृति जी, तो छोटी छोटी समस्याएं भी आसानी से सुलझ सकती है।
0: जी हाँ।
1: आज कई घरों में सुविधाएं तो बहुत है लेकिन बातचीत और अपनापन कम होता जा रहा है। इस कारण यह श्रोता साथियों, लोग सामान जुटाने में व्यस्त रहते हैं लेकिन रिश्तों को समय नहीं दे पाते। साथ ही हम देखते हैं कि समझदारी परिवार को जोड़ कर रखती है और घर को घर बनाए रखती है।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मनुष्य समझदारी से जीवन जीना सीख जाता है तब वह हर परिस्थिति में खुश रहना भी सीख जाता है। वो छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढ लेता है, दूसरों का सम्मान करता है श्रोता साथी, और कठिनाइयों में भी हार नहीं मानता।
1: बिल्कुल।
0: ये जीवन का सच्चा उजाला है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को केवल धन कमाने की शिक्षा नहीं देनी है बल्कि समझदारी की शिक्षा देनी है, मानवता की शिक्षा देनी है और संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देनी है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि अंततः वही व्यक्ति सफल कहलाता है जो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी आशा और खुशियों की रोशनी फैलाता है।
1: बिल्कुल।
0: कहा गया है श्रोता साथियों कि जीवन में असली उजाला महंगे सामान से नहीं आता, जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बार बार बता रहे हैं। समझदारी संस्कार और अच्छे व्यवहार से आता है क्योंकि वस्तुएं केवल हाथ भरती है मनीषा, जबकि समझदारी पूरा जीवन रोशन करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जीवन की असली रोशनी महंगे साधनों में नहीं, बड़े घरों और दिखावों में नहीं छिपी होती है साथियों। सच्चा उजास उस इंसान के जीवन में होता है जो समझदारी से जीवन जीना सीख जाता है। समझदारी से अपने जीवन में संतोष, धैर्य, प्रेम और सकारात्मक सोच और साथ ही मानसिक शांति को महत्व देता है। यह बातें जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती है साथियों। साथ ही जागृति जी, हम देखते हैं कि सामान जीवन को आसान बना सकता है लेकिन खुशहाल जीवन नहीं। खुशहाल जीवन के लिए श्रोता साथियों, अच्छे विचार, अच्छे रिश्ते और सही सोच की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: जब इंसान अपनी जरूरतों को समझकर संतुलन से जीवन जीता है तब उसके जीवन में वास्तविक उजास आता है। इसीलिए श्रोता साथियों, हमें अपने जीवन में केवल वस्तु जुटाने के बजाय समझदारी, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। यही हमारे जीवन के सच्चे अर्थों में हमारे जीवन में रोशनी लाते हैं।
0: बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जीवन का सच्चा उजाला बाहरी वस्तुओं, महंगे सामान और दिखावों की चमक में नहीं होता है, जैसा कि बार बार श्रोता साथियों इसी कार्यक्रम के माध्यम से यही बातें बता रहे हैं। हमारे जीवन में हमें अच्छे विचारों को लाना होगा, सही निर्णय लेने सीखने होंगे क्योंकि धन और साधन जीवन को सुविधाजनक तो अवश्य बनाता है लेकिन ये मन की शांति, रिश्तों की मिठास, आत्मिक संतोष नहीं दे सकते। यदि केवल सामान से ही सुख मिलता तो दुनिया के सभी अमीर लोग हमेशा खुश रहते, उनके जीवन में कभी तनाव ही नहीं होता। मनीषा, हम देखते हैं कि अकेलापन या दुख नहीं होता, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। आज अनेक लोग अपार धन संपत्ति होने के बावजूद चिंता, अवसाद और असंतोष से घिरे हुए होते हैं। वहीं दूसरी ओर कई साधारण लोग सीमित साधनों में भी मुस्कुराते हुए जीवन जीते हैं, क्योंकि उनके पास समझदारी होती है, संतोष होता है, सकारात्मक सोच का धन होता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत वस्तुएं नहीं बल्कि समझदारी और संतोष है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें आगे भी छोटी मोटी रह गई हैं वो जारी रहेंगी।
0: और जैसा कि हम बात कर रहे हैं मनीषा, कि मनुष्य के जीवन में समझदारी उस दीपक की तरह होती है जो हर अंधेरे रास्ते को रोशन कर देती है। कठिन परिस्थितियों में समझदारी इंसान को टूटने से बचाती है। जब जीवन में समस्या आती है तब महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर काम नहीं आते, जैसा कि श्रोता साथियों आपको हमने पहले कहा था, बल्कि धैर्य, सही सोच और निर्णय लेने की क्षमता ही इंसान को संभालती है।
1: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति परिस्थितियों को समझकर शांत मन से निर्णय लेता है वो हर मुश्किल का रास्ता खोज लेता है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल
0: कहा भी गया है कि समझदारी वो रोशनी है जो तूफानों में भी रास्ता दिखाती है।
1: जी हाँ,
0: आज का समाज दिखावे की संस्कृति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी चमकदार जिंदगी दिखाने लगे हैं, महंगे मोबाइल लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, आलीशान जीवन शैली को सफलता का प्रतीक मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, युवा पीढ़ी कई बार इसी भ्रम में पड़ जाती है कि अधिक सामान ही अधिक सम्मान दिला सकता है मनीषा, लेकिन समय ये साबित कर देता है कि दिखावा केवल कुछ समय तक लोगों को आकर्षित कर सकता है, जबकि अच्छे संस्कार और समझदारी जीवन भर सम्मान दिलाते हैं। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि दिखावा आंखों को प्रभावित जरूर करता है, लेकिन समझदारी दिलों को जीतती है। इसी प्रकार हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जीवन भी हमें यही सिखाता है मनीषा, कि उनके पास न कोई राजसी ठाट बाट थे और न ही विलासिता का जीवन, लेकिन उनकी समझदारी, सादगी और सत्य के प्रति समर्पण ने उन्हें पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया। उन्होंने साबित किया कि इंसान की पहचान उसके पहनावे और सामान से नहीं होती बल्कि उसके चरित्र और विचारों से आती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवन का सच्चा उजास बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की समझदारी से आता है।
0: बिल्कुल,
1: सामान कुछ समय के लिए तो हमें आकर्षित कर सकते हैं लेकिन स्थायी खुशी नहीं दे सकते। समझदार इंसान को संतुलन, धैर्य और संतोष की सही दिशा दिखाता है। यही गुण जीवन को सुंदर और सरल और सार्थक बनाते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम दिखावे की दौड़ से बाहर निकल लें और अपने जीवन को वास्तविक मूल्यों को समझें। हमें अपने व्यवहार, सोच और रिश्तों को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब इंसान भीतर से समृद्ध होता है जागृति जी, तभी उसका जीवन वास्तव में प्रकाशित होता है।
0: बिल्कुल,
1: जिस घर में समझदारी, प्रेम और संतोष का दीपक जलता है वहाँ कम साधनों में भी खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन जहाँ केवल दिखावा और लालच हो जागृति जी, वहाँ अपार धन भी सच्चा उजास नहीं ला सकती।
0: जी हाँ मनीषा, तो जैसा कि मनीषा आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चली रही है, ये बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रही थी, जीवन में उजास सामान से नहीं बल्कि समझदारी से आता है। जागृति जी, हम देखते हैं कि मनुष्य हमेशा बेहतर जीवन की तलाश करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में खुश हो, शांति हो, सम्मान और खुशियों की रोशनी बनी रहे। इस चाह में इंसान घर, गाड़ी, कपड़े, मोबाइल और तरह तरह की सुविधाएं जुटाने में लगा रहता है।
1: बिल्कुल,
0: आधुनिक समय में यह धारणा तेजी से बढ़ती जा रही है। श्रोता साथियों, अधिक सामान होगा तो हमारा जीवन अच्छा होगा, जीवन उतना बेहतर होगा और चमकदार बन जाएगा। लेकिन साथियों, हम वास्तविक जीवन को देखते ही नहीं। हमें तब पता चलता है जब केवल हमारे पास साधन ही रह जाते हैं, हमारे रिश्ते दूर चले जाते हैं, हमारे पास बाकी कुछ बचता ही नहीं। तब जाके हमें समझ आता है कि हमारे जीवन में जरूरी सामान क्या था और जरूरी रिश्ते हैं वो क्या थे।
1: बिल्कुल, और जैसा कि समझदारी को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो श्रोता साथियों, समझदारी का अर्थ केवल पढ़ा लिखा होना नहीं होता है। कई बार कम पढ़े लिखे लोग भी जीवन की गहरी समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि कब बोलना है, कब शांत रहना है और कहां खर्च करना है, कहां बचत करनी है। यही सारी कुछ बातें होती है शिक्षित लोगों की, जो कि गलत निर्णय लेते भी नहीं है। इसलिए श्रद्धा साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को अच्छा इंसान बनाए और सही दिशा में सोचने की क्षमता दे।
0: जी हाँ,
1: डिग्रियां जीवन नहीं संवारती श्रद्धा साथियों, सही समझ जीवन को महान बनाती है। आज हम देखते हैं मनीषा की, पर्यावरण संकट भी हमें समझदारी का महत्व सिखा रहा है।
0: जी हाँ,
1: मनुष्य ने सुविधाओं की चाह में प्रकृति का बहुत दोहन किया है। जंगल काटे गए, नदियां प्रदूषित हुई और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गए। यदि समय रहते मनुष्य समझदारी से काम नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
0: जी हाँ,
1: इसलिए समझदारी इसी में है श्रोता साथियों, कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले और केवल अपनी जरूरत तक सीमित रहे, क्योंकि प्रकृति का सम्मान करना ही भविष्य को सुरक्षित करना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि जीवन की वास्तविक सुंदरता उजास या की बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि इंसान की सोच, समझदारी और व्यवहार में छुपी होती है। भौतिक साधन जीवन को आरामदायक अवश्य बना सकते हैं साथियों, लेकिन वे मन की शांति, आत्मसंतोष और रिश्तों की गर्माहट नहीं दे सकते। आज का समाज तेजी से आधुनिकता की सुविधाओं में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: हर व्यक्ति अधिक से अधिक चीजें जुटाने में लगा हुआ है, लेकिन इस दौड़ में हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारी शांति किस में है, हमारे सुख किस में है और हमें किस चीज की आवश्यकता है। श्रोता साथियों, समझदारी इंसान को यह सिखाती है कि जीवन केवल कमाने और जमा करने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक अर्थ संतुलन बनाकर जीना, दूसरों के प्रति संवेदना रखना और अपनी जरूरतों को समझना और हर परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना है। समझदार व्यक्ति जानता है कि किस चीज में उसकी खुशी है और किस चीज से उसे दुखी मिल सकती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन की वास्तविक रोशनी बाहर की चमक में नहीं बल्कि भीतर के ज्ञान और विवेक में छुपी होती है। श्रोता साथियों, समझदार मनुष्य को सही रास्ता दिखाती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है, कठिनाइयों में साहस देती है, जीवन को सार्थक बनाती है। इसलिए हमें केवल धन और वस्तु को इकट्ठा करने की दौड़ में नहीं भागना है श्रोताओं, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और चरित्र को भी समृद्ध बनाना है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब इंसान के भीतर समझदारी का दीपक जलता है मनीषा, तब उसका पूरा जीवन उजाले से भर जाता है और वही उजाला समाज तथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से बस हम आपको यही कहना चाहेंगे कि महंगे सामान कुछ समय के लिए चमक दे सकते हैं, लेकिन समझदारी वह सूर्य है जो पूरे जीवन को रोशन कर देती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि समझदार इंसान को कठिन समय में भी टूटने नहीं देती, उसे धैर्य पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाती है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं साथियों, तब महंगे सामान नहीं बल्कि सही सोच, मजबूत मन ही काम आता है। इसीलिए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं बल्कि सकारात्मक सोच और परिपक्वता की समझ है। यही समझ इंसान को गलत रास्ते पर जाने से बचाती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है और जीवन को सार्थक दिशा में ले जाती है। हमें अपने जीवन में सादगी और संतोष को स्थान देना चाहिए। सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति अक्सर कम तनाव में रहता है, वो छोटी छोटी खुशियों में आनंद ढूंढ लेता है। साथ ही परिवार के साथ समय बिताना, माता पिताओं का आशीर्वाद लेना, मित्रों के साथ रहना, प्रकृति की सुंदरता और मन की शांति, श्रोता साथियों, ये सभी जीवन के वे खजाने हैं जिन्हें कोई धन नहीं खरीद सकता। यदि इंसान उन्हें पहचान ले तो उसका जीवन वास्तव में उजाले से भर सकता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि कार्यक्रम में आज बहुत सारी बातें हुई मनीषा इस कार्यक्रम के माध्यम से, और अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे, पर जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को हम पता बताना चाहेंगे ताकि उनको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए वो अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है श्रोता साथियों 3-2
0: हमारा पिन कोड नंबर है 3-2-7-0-0-1। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो साथियों पहली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच पंटोपो सिटी से है। फिल्म का नाम है खलनायक, गीत के बोले पालकी में होके सवार चली रे, और इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे प्रशांत जी, सुनीता जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा जी, और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों जिला भागपत से अब्दुल्ला संता आवासी जी, और भी दोस्त जुड़ रहे हैं। मंजुका टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और संताना MP से उमक मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच पंटपुर से ही। फिल्म का नाम है लोफर। गीत के बोले, आज मौसम बड़ा बेईमान है। साथियों, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे जाकिर मुलानी, सोमिया, सुबान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। जिला भागपत से आसिर अली खान, मुमीत नाच, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुजय शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों। जिला भागपत से जगमोहन श्री प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी जी, अर्जुन भारतीय, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नेतुन जी, प्यारे पोती भुवनेश्वरी जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापत, श्रीमती सोनम देवी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपने दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच जिला हरियाणा से ही। फिल्म का नाम है बादल, गीत के बोल है जुगनी जुगनी। साथियों, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रति सिंह, लवप्रति सिंह, कमरजीत जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विन और विपुल जी और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों। आर्यनगर कोका बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरसी जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंजन जंगेल जी। सुकरी कला से अमित जंगेल, कुशल जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के साथ हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच खड़वा मध्य प्रदेश से ही। फिल्म का नाम है मोहरा, गीत के बोले टिप टिप बरसा पानी। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे बेबी शलीमा डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जखीरा जी, बेबी आशा जी खत्री जी, जिला धर्मपुरी से मुशा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जखीरा खत्री जी, और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, गश ढुंडवारा से शमशुल कमोराही, शाहीन फतिमा, आनंद खान, फेनान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी, और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत्ता शिवाश, श्रीमती करुणा शिवाश, आयु शिवाश, विवेक शिवाश, बेबी आयु शिवाश, बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिराज, अनिता राज, सुमित सोमो मानस राज जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से ही। फिल्म का नाम है देवदास, गीत के बोले मंडोला। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चैतन्य हाटा, दिशा कुशल मुणत जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। सदना मेराट से अनिल जैन, जैन साहब, यमन जैन, मुस्कान जैन, मास्टर विजय जैन और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों मस्तानापुरा से अंता भगत, अरुणा भगत, चैतन्य भगत, सुलोचना भगत जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपने दोस्त इरना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच हरिद्वार से ही। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम, गीत के बोले डोली तारा ढोल भाजी। साथियों, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, महाराष्ट्र से पीए नवाकर, निर्मल नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इगले, मंगला जी, आशीष मोहेंकर जी, और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि, निजाजी, सबरला जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मन छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार जी, ईशा जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच पोड़िया कला दुर्ग से ही। फिल्म का नाम है होगी प्यार की जीत। गीत के बोले दिल दीवाना करता है। इस गीत के साथ जुड़ना चाहते हैं साथियों संजय साहू, सिद्धार्थ साहू, शशांक साहू, सीमा साहू जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे। दोस्तों, महाराष्ट्र से है माया देवी जी और भी दोस्त जुड़ रहे हैं। जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा जी और इस गीत की अनुरोध करता है। दोस्तों, खेल बाजार पानीपत से नरेश मोहत्रा, निटू लक्ष्मण मोहत्रा, लाडो कोल मोहत्रा, पापा जी नानक चंद्र मोहत्रा, शिवाजी नगर को रोहतक से है पेशिका, कोलशिका, गुड्डी भाविका, शिका जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपने दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच बीआर कॉलोनी दिल्ली से ही। गीत के बोले बोल राधा बोल, और इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे तुलसी कुमार, विना मस्किन, आशीष राज, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल कुमार, रजत कुमार, केशव रिदान कुमार जी, और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलियस डिकेस्टो जी, और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों। जोधपुर राजस्थान से रमेशचंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, कपिल चौहान, मोहिन चौहान जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। नेहरू चौक पौंडन से डॉक्टर सूरज यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रशांत यादव, सोनल यादव, बीबी सिया यादव, जलाना शहर से सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओमनाथ यादव, सुभाष यादव, चंद्र यादव, एकनाथ यादव, संगीता यादव जी। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता रीना पटेल के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है कल आज और कल। गीत के बोल हैं आप यहां आए किस लिए। इस गीत की फरमाइश करता है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश जी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज, आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, ऐशिका, श्वेता जी वर्मा। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से हीरामन शेंडी, शीला देवी शेंडी, सिद्धार्थ जी गोड़ानी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर, आरव और अर्पिता जी। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर।

0: शादी ना बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो,

इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: muskerij. Pelle zerna av muskerij.
1: Pelle zerna av आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुके हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से। फिल्म का नाम है आराधना, गीत के बोल हैं कोरा कागज था ये मन मेरा। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मदनपुर छत्तीसगढ़ से, श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अम्बाला हरियाणा से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मुन्नत, गुरशब्द सिंह राहुल, गुरकीरत जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार कुरावली से, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। धुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजा, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नोरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। पत्रोड से जुड़ना चाह रही विजय अंबाटकर, सुनीता अंबाटकर, अक्षय अंबाटकर, राधिका अंबाटकर, ऋषिकेश जी अंबाटकर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है कोरा कागज था ये मन मेरा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागुट रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल है शीशा हो या दिल। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है संतोष भारकी, सुनियाना सुकन्या जी और सरिता भारकी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कलानौर से, नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बाबा कुटरी रायगढ़ से, शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राधेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान। गंजुडवारा से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाश पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पटेल नगर महलोत से। फिल्म का नाम है हमराज। गीत के बोल हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो। इस गीत की फरमाइश करता है डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गणदीप झंझोरिया, गुरजू और गुड्डू जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से सत्यम कुमार, आदर्श जी और कोलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी जी देशमुख और कल्पना जी देशमुख। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुरा से समित मशरूम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम सदाम जी। श्रीरामपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश जीवित दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रही है अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, विशाखा सोनवने जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राजनंदा छत्तीसगढ़ से, बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या जी शाहू। दुर्गा कॉलोनी हांसी से जुड़ रही है राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिक शेख, नाजिया नाशिर, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल जी मुजावर और जुमेब जी मुजावर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है जनता की अदालत, गीत की बोली है दिल की हालत। इस गीत की फरमाइश करता है रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रत्यजी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनोरी तेलीवाला से, निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, अयन बाबू और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी, शिवन्या और अन्नू जी। इस गीत की अनुरोध करता है कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल की हालत। आप सभी बने

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बुलंदशहर से। फिल्म का नाम है मन मंदिर, गीत के बोल हैं जादूगर तेरे नैना। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। इस गीत के अनुरोध करता है बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुधन सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, दर्शन राजपूत और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, तायनी हुसैन अंसारी, तोयफुर मोहम्मद अफजान अंसारी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। करेली से मोहम्मद यासीन अंसारी, नरसिंह अंसारी, शमा अंसारी, शमीम अंसारी और माहिनूर जी अंसारी। भीड़ शहर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहरेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू और पेपी कुदलेश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गजरद्वारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद फेक जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जादूगर तेरे नैना।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इसी बीच जुनाचार्य अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना ताई गुड़ाने, हीरामन शेंडी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी गुड़ाने। दिल्ली से जुनाचार्य तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। इसी बीच जुनाचार्य दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनहाल जी मेहरा। पंडितपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे हैं सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, प्रशांत सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, रविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनोने, करिश्मा सोनोने, अविका सोनोने, शायशा सोनोने जी। गंजूद्वारा से जुड़ना चाह रहे हैं यासीन हासमी, नवजा बेगम जी, तौफीक जी और तोइनूर जी, कलीम अंसारी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोल ही चुरा के दिल मेरा।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडवारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है हम हैं राही प्यार के। इस गीत की फरमाइश, इस गीत के बोल ही यूं ही कट जाएगा सफर साथ साथ में। इस गीत की फरमाइश करता है अफ्ताब अंसारी, रियाना अंसारी, मोहम्मद फेक अंसारी, अनवर मास्टर, लुभाना अंसारी और आलिया जी अंसारी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाली खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं रामपुर से अमरजीत, शिवम, शुक्लाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजय योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। मलियाना सरधाना मेरठ से जुड़ रहे हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं यताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, सुप्रसाद जयसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जी जयसवाल। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, शिव कुमार शर्मा, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे श्रीमती जयवंती जी केवट। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं अब्दुल गफ्फा डावर जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागुर रेडियो 90.8 FM पर। दोस्तों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत थे। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इसे लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। श्रोता साथियों, यह तो थी आज के संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता, फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता।
1: सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुन, आपके कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
4: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
5: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
3: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: भाई ने बोलो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हो या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। हो भे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
4: हो भे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
4: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बात रहने वाली है काम के साथ आनंद में जीने का महत्व।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि श्रोताओं, आज का युग तेजी, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ का युग है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त है, युवा नौकरी और करियर में लगे हुए, महिलाएं घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभा रही है, बुजुर्ग परिवार की चिंता में लगे रहते हैं। ऐसे समय में लोग काम बहुत कर रहे हैं लेकिन जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और इन सभी के कारण तनाव, चिंता, थकान और अकेलापन बढ़ता जा रहा है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा।
1: श्रोताओं, जीवन केवल काम करने का नाम नहीं है बल्कि काम के साथ आनंद पूर्वक जीना ही सच्चे जीवन की पहचान है। कशिश, जब व्यक्ति अपने कार्य को खुशी और उत्साह के साथ करता है तब उसका जीवन संतुलित, सफल और सुखद बनता है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वही जानने वाले हैं कि काम के साथ हम आनंद में किस तरह से जिए। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम जिस विषय को लेकर आपसे बातचीत कर रहे हैं वो हमें भीतर से मजबूत बनाएगा। साथियों, जैसा कि गीत से पहले बताया था कि काम के साथ हम आनंद में कैसे जी सकते हैं, इस विषय को लेकर आज हम बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और आपने बताया था जागृति जी कि आज के जो हमारे युवा साथी हैं वो कह सकते हैं कि करियर की दौड़ में बहुत ज्यादा परेशान है, जिसके कारण उनमें तनाव, चिड़चिड़ापन, ऐसी समस्याएं हो रही हैं। दोस्तों, पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगिता और भविष्य की चिंता होना आम बात मानी जाती है। लेकिन अगर आपको बताएं, इन सबके बीच कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जीवन केवल काम करने का नाम नहीं है, बल्कि आनंद के साथ जीने का नाम भी है। दोस्तों, यदि काम के साथ मन में खुशी, संतुलन और उत्साह न हो तो सफलता भी जागृति जी अधूरी लगने लगती है। हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन मशीन नहीं है, वह भावनाओं, सपनों, रिश्तों और उम्मीदों से बना हुआ एक जीवंत व्यक्तित्व है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए साथियों, काम के साथ साथ आनंद का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए भोजन और मन के लिए शांति।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि काम वही सफल बनता है जिसमें आनंद का रंग मिलता है। काम और आनंद एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। यदि कोई व्यक्ति केवल काम करता रहे और अपने मन को खुशी से दूर रखे तो वो धीरे धीरे थक जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति केवल मनोरंजन में डूब जाए और काम को महत्व न दे तो उसका भविष्य कमजोर हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जीवन में दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी कार्य को रुचि और आनंद के साथ करते श्रोताओं तो वो बोझ नहीं लगता है।
0: बिल्कुल।
1: कलाकार अपनी कला में आनंद खोजता है, किसान खेती में खुशी महसूस करता है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाकर संतोष पाता है और खिलाड़ी खेल में आनंद प्राप्त करता है। यही आनंद व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए कहा गया है कशिश कि आनंद से किया गया काम सफलता को नया आयाम देता है।
0: जी हाँ जागृति जी, और हम देखते हैं युवा साथियों कि आनंद केवल हंसना या मनोरंजन करना नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि आनंद एक ऐसी मानसिक स्थिति है जागृति जी, जिसमें हमारा मन शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। हम

0: हैं कि जब व्यक्ति अपने काम को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझकर करता है तो वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस करने लगता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, जब वह अपने रिश्तों को समय देता है, जब वह स्वयं को स्वीकार करता है, तब वह आनंद के और भी करीब पहुंच जाता है। हम देख सकते हैं कि आनंद भीतर से आता है, ये किसी महंगी वस्तु या बड़ी सफलता पर निर्भर नहीं करता। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: कई बार तो एक कप चाय, परिवार के साथ समय बिताना, मित्रों के साथ हंसी मजाक और संगीत सुनना भी खुशी दे देता है। और साथ ही किसी जरूरतमंद की मदद करना भी मन को सच्चा आनंद दे सकता है। साथियों,
1: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज कई लोग मानसिक तनाव से परेशान हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि काम को केवल जिम्मेदारी समझते हैं, खुशी का माध्यम नहीं समझते। जब व्यक्ति हर समय दबाव में काम करता है तो उसका मन और शरीर दोनों थक जाता है, इससे उसे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, निराशा बढ़ने लगती है। और यदि काम के बीच थोड़ा हास्य, संगीत, बातचीत, परिवार के साथ समय और मनपसंद गतिविधियां शामिल हो जाए तो जीवन हल्का और सुखद बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आनंद व्यक्ति के मन को नई ऊर्जा देता है। जो लोग मुस्कुराते हुए काम करते हैं वे कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से सामना कर लेते हैं। कहा भी गया है कि जहाँ आनंद रहता है वहाँ तनाव टिक नहीं पाता।
0: जी,
1: और हमारे श्रोता साथियों से कशिश हम यही कहना चाहेंगे कि जब मन प्रसन्न होता है तब बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और वैज्ञानिक शोध भी यही बताते हैं कि खुश मन से काम करने वाले लोग अधिक रचनात्मक होते हैं और सफल होते हैं। आनंद मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा देता है जिससे उसका ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि काम के साथ आनंद में जीने का क्या महत्व है, तो आगे भी ये बातें हम करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों के बीच संतुलन इतना जरूरी क्यों है।
1: बिल्कुल,
0: तो और भी बातें होंगी युवा साथियों से, लेकिन अभी क्यों ना एक प्यारा सा गीत हमारे दोस्तों को हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ में। और जैसा कि हमने गीत से पहले आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, और हमने बात भी की थी कि काम के साथ आनंद में जीने का महत्व बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि कशिश हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो श्रोताओं, काम और आनंद का संतुलन शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। लगातार काम करने से थकान, सिर दर्द, अनिद्रा और कई सारी बीमारियां पैदा होती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जब व्यक्ति समय निकालकर आराम करता है, हंसता है, खेलता है और अपनी पसंद की चीजें करता है, तब उसका स्वास्थ्य और बेहतर होता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि योग, व्यायाम, संगीत, पुस्तक पढ़ना, प्रकृति के बीच समय बिताना, मित्रों से बातचीत करना, ये सब आनंद के अच्छे स्रोत हैं। ये गतिविधियां मन को शांति देती है, शरीर को ऊर्जा देती है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन आनंदमय जीवन की पहचान है।
1: बिल्कुल। अब यही अगर बात करें मानसिक स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी क्यों है, तो कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति लगातार काम करता रहता है और स्वयं को आराम या खुशी के लिए समय नहीं देता है, तो जागृति जी, उसका मानसिक संतुलन इससे बिगड़ने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: जिससे तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। ऐसे में दोस्तों, आनंद जो है वो मन को हल्का करेगा, आपके तनाव को कम करेगा और आपको सकारात्मक सोचने की शक्ति भी प्रदान करेगा। अगर काम की गुणवत्ता की बात करें जागृति जी, तो जो व्यक्ति आनंद के साथ काम करेगा तो उसका काम अधिक प्रभावशाली भी होगा।
0: बिल्कुल।
1: और वहीं यदि मन थका हुआ है तो हम परेशान है साथियों, तो काम में गलतियां होना आम बात है। लेकिन जब व्यक्ति खुश होकर काम करता है तो उसकी रचनात्मकता इससे बढ़ती है और वह नए विचारों के साथ आगे भी बढ़ता है। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज बड़ी बड़ी कंपनियों में भी अपने कर्मचारियों के लिए मनोरंजन, योग, संगीत और आराम की सुविधाएं देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि खुश व्यक्ति बेहतर काम कर सकता है।
0: जी हाँ। और हम देखते हैं कि आज के युवा सफलता पाने की दौड़ में इतना व्यस्त हो गए कि वे खुद को समय देना भूल गए हैं। कई युवा मोबाइल, सोशल मीडिया और काम के दबाव में मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझना होगा कि केवल पैसा और पद ही जीवन नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: हमारे युवा साथियों को ये भी कहना चाहेंगे कि अपने शौक, खेल, संगीत, कला और परिवार के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। जब जीवन में संतुलन होगा तभी हम लंबे समय तक खुश और सफल रह पाएंगे।
1: जी हाँ।
0: कहा भी गया है कशिश की, सफल युवा वही है जो काम के साथ मुस्कुराना भी जानता है। महिलाएं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाती है। कई बार वे अपने परिवार की चिंता में खुद की खुशी को भूल जाती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन महिलाओं के लिए भी आनंद और आत्मसंतोष उतना ही जरूरी है।
1: जी जी।
0: यदि महिलाएं अपने लिए थोड़ा समय निकाले, अपनी रुचियों को महत्व दे और मानसिक शांति बनाए रखे, तो वे अधिक आत्मविश्वासी और ऊर्जा के साथ परिवार की देखभाल कर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: जो खुद खुश रहना सीखती है वही परिवार में खुशियां बांटती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर हमारे युवा साथी असफलता को जीवन का हिस्सा मान ले तो भी वे अपने जीवन को आनंद के रूप में जी सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हर व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता, ये बात तो आप सभी जानते हैं, और असफलता जो है वो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा भी है। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: यदि असफलता आने पर व्यक्ति टूट जाए तो वह आनंद ही खो देगा। लेकिन वहीं यदि वह उससे सीखकर आगे बढ़े और कुछ नया अनुभव प्राप्त करे तो इससे वह मजबूत बनेगा। ऐसे में हमारे युवा साथियों को ये समझना चाहिए कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर होती है। साथ ही बात करें प्रकृति से जुड़ने की, तो दोस्तों प्रकृति जो है वो मन को शांति देती है। सुबह की ताजी हवा, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज और साथ ही खुला आकाश जो है वो मन को एक नई ऊर्जा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज हम देखते हैं जागृति जी की, तकनीक के बीच जी रहे युवा साथियों के लिए प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। इससे मानसिक तनाव उनका कम होगा और वे अपने मन में सकारात्मकता को भी लेकर आएंगे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। यदि हम सुबह की ताजी हवा, हरियाली और प्राकृतिक वातावरण से जुड़े तो जीवन में नई ऊर्जा और खुशी का अनुभव होता है।
1: बिल्कुल।
0: कहा गया है कि प्रकृति के करीब रहेंगे तो आनंद से भरपूर जीवन जी पाएंगे। काम और आनंद का संतुलन हमें बिठाना है श्रोता साथियों। जैसे कि हमें समय का सही प्रबंधन करना है, काम के बीच थोड़ा विश्राम लेना है, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना है, अपने शौक को भी जीवित रखना है, हर छोटी सफलता का आनंद लेना है, सकारात्मक सोच रखनी है, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना है, योग और ध्यान को अपनाना है। कहा गया है कशिश कि इन आदतों से जीवन संतुलित और खुशहाल बन सकता है। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि काम जीवन का आवश्यक हिस्सा है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आनंद जीवन की आत्मा है। केवल काम करने से जीवन मशीन जैसा बन जाता है, जबकि आनंद उसे सुंदर और जीवंत बनाता है। और जो व्यक्ति काम और खुशी के बीच संतुलन बना लेता है कशिश, वही सच्चे अर्थों में सफल भी होता है और संतुष्ट कहलाता है।
1: बिल्कुल।
0: हमें अपने जीवन में मेहनत के साथ मुस्कान भी लानी है श्रोताओं, जिम्मेदारियों के साथ रिश्ते भी निभाने हैं और काम के साथ आनंद को भी स्थान देना है। यही स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन की कुंजी है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों को कि काम और आनंद दोनों जीवन के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं साथियों।
0: बिल्कुल,
1: यदि केवल काम होगा, आनंद नहीं होगा तो जीवन थका हुआ और बोझिल बन जाएगा, और यदि केवल आनंद होगा और बिना जिम्मेदारी के होगा तो जीवन लक्ष्यहीन हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए युवा साथियों आपको चाहिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने मन की खुशी का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और रिश्तों का भी ध्यान रखें।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि दोस्तों जीवन केवल मंजिल पाने का नाम नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए सफर तय करने का भी नाम है।
0: तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और देख पा रहे हैं कि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: तो विदा तो जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से काम के बीच में आनंद को कैसे ढूंढना है, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस

0: 2027 हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करूँ, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ल ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन नो स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है गांव का बचपन बनाम शहर के बचपन को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, बचपन जीवन का सबसे सुंदर मासूम और सीखों से भरा समय होता है। यही वह दौर है जहाँ इंसान के व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है।
0: बिल्कुल हाँ।
1: बच्चे जिस वातावरण में पलते हैं बढ़ते हैं उसी के अनुसार उनके विचार व्यवहार और आदतें और जीवन शैली विकसित होती है।
0: बिल्कुल
1: आज के समय में गांव और शहरों के बच्चों का बचपन काफी अलग दिखाई देता है। गांव का बचपन मिट्टी की खुशबू, खुले मैदानों, प्रकृति और सामूहिक जीवन से जुड़ा होता है, जबकि शहर का बचपन आधुनिक सुविधाओं, तकनीक, तेज जीवन शैली और सीमित सामाजिक संबंधों के बीच गुजरता है। श्रोता साथियों, दोनों प्रकार के बचपन की अपनी अपनी विशेषताएं और चुनौतियां और अनुभव होते हैं। गांव का बच्चा प्रकृति जीवन के करीब होता है, वहीं शहर का बच्चा आधुनिक संसाधनों, नई तकनीकों से जल्दी परिचित हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: सामुदायिक दृष्टि से देखें तो दोनों ही वातावरण बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि गांव और शहर के बचपन में क्या अंतर है, उनकी अच्छाइयां क्या है और सामाजिक जीवन किस प्रकार से दोनों के बीच संतुलन बनाकर बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर बना सकता है।
2: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
0: जी,
2: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: जी हाँ,
2: तो क्या ना साथियों को पहले यहाँ पर गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
2: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि साथियों गीत से पहले विषय बता ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम बात करने वाले हैं गांव का बचपन बनाम शहर का बचपन। साथियों, हम कह सकते हैं कि बचपन जीवन का सबसे सुंदर, सरल और यादगार समय होता है। यह वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बिना किसी चिंता के हंसता, खेलता और खुशहाल जीवन जीता है। बचपन की यादें कशिश व्यक्ति के मन में हमेशा जीवित रहती है, चाहे वह समय कितना भी बदल जाए। बचपन की मासूमियत और उसकी मिठास कभी फीकी नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में बच्चों का जीवन बहुत तेजी से बदल रहा है। अंजलि जी, आधुनिक तकनीक और बदलती जीवन शैली ने बचपन के स्वरूप को भी बदल दिया है। विशेष रूप से गांव और शहरों के बीच जीवन में काफी अंतर देखने को मिलता है।
2: बिल्कुल रीना, आपने सही कहा। यही अब बात करें तो गांव का बच्चा खुली हवा, तेज खलियान, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बीच बड़ा होता है। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की आवाज और मिट्टी की खुशबू उसके जीवन का हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल,
2: प्रकृति से जुड़कर जीवन को समझता है। गांव के बच्चों को मौसम, खेती, पेड़ पौधों और पशुओं की जानकारी बचपन से ही हो जाती है। यही कारण है कि उनमें धीरे, सहनशीलता और सरलता अधिक दिखाई देती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें खेल और शारीरिक सक्रियता की, तो दोस्तों गांव के बच्चों का बचपन खेल कूद से भरा होता है। वे मैदानों में कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, लंगड़ी, रस्सी कूद और न जाने क्रिकेट जैसे कई खेल खेलते हैं। साथियों, मोबाइल और टीवी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होने के कारण वे अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। इससे अंजलि जी और रीना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनमें टीम भावना विकसित होती है।
2: जी हाँ।
1: वे हार जीत को स्वीकार करना जानते हैं और मिलजुल कर रहना भी सीखते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। अगर हम बात करें कि गांव में परिवार के बीच गहरा प्रेम और अपनापन होता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे अपने दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं। दादा नानी की कहानियां बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है। साथियों, इससे बच्चों में संस्कार और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित होती है।
2: जी हाँ, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि गांव के बच्चे छोटी उम्र से ही घर और खेत के कामों में हाथ बटाने लगते हैं। इनसे उनमें जिम्मेदारी की भावना जल्दी विकसित हो जाती है।
1: जी,
2: वे मेहनत का महत्व तो समझते हैं और परिवार के संघर्षों को करीब से देखते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इस तरीके से हम जान पाए कशिश की कि गांव के जो बच्चे होते हैं उनका बचपन कैसे होता है। आगे हम कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे शहर के बच्चों के बचपन के बारे में। लेकिन अभी मन कर रहा है कि प्यारे से गीत के साथ में हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा देते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना गांव के बच्चों का बचपन कैसा होता है, यही अगर बात करें शहर के बच्चों के बचपन के बारे में
1: जी,
0: तो श्रोता साथियों, शहर के बच्चों को अच्छी शिक्षा, आधुनिक स्कूल, कंप्यूटर, इंटरनेट, लाइब्रेरी और अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का अवसर आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल, नई तकनीकों से जल्दी परिचित हो जाते हैं, उनके पास सीखने के अनेक साधन होते हैं जिससे उनका ज्ञान बढ़ता है और वे नई दुनिया को समझने लगते हैं।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि शहर का बचपन आज मोबाइल, वीडियो गेम, इंटरनेट और सोशल मीडिया से काफी प्रभावित हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे अधिक समय स्क्रीन में बिताने लगे हैं रीना, इसका असर उनके स्वास्थ्य, आंखों और मानसिक स्थिति पर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बच्चे बाहर खेलने के बजाय अकेले मोबाइल में व्यस्त रहते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर हमारे साथियों को हम बताएं समय की कमी और अकेलेपन की समस्या की, तो दोस्तों शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में रीना कई बार बच्चों को परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। हम देखते हैं अंजलि जी कि इससे बच्चों में अकेलापन की समस्या बढ़ सकती है। साथ ही जो फ्लैट संस्कृति और सीमित सामाजिक संबंधों के कारण बच्चे जो होते हैं वो पड़ोसी और समाज से उतना जुड़ नहीं पाते हैं जितना श्रोता साथियों गांव में जुड़ाव होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समय की कमी और अकेलापन भी एक समस्या है। वहीं अगर प्रतियोगिता के दबाव की बात करें तो शहर के बच्चों पर पढ़ाई, करियर और प्रतियोगिता का दबाव अधिक होता है।
0: जी,
1: छोटी उम्र से ही उन्हें अच्छे अंक लाने और आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल कर दिया जाता है अंजलि जी, जिस दबाव के कारण कई बच्चे तनाव, चिंता और मानसिक थकान भी महसूस करने लगते हैं।
2: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। कार्यक्रम के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आज शहरों में मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। बच्चे बाहर खेलने के बजाय स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताते हैं, इससे उनकी आंखें खराब होती है अंजलि जी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही वह धीरे धीरे प्रकृति से भी दूर होते जा रहे हैं।
0: जी हाँ, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि इस शहरों में ट्रैफिक, भीड़ और सुरक्षा कारणों से बच्चों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। वे खुलकर बाहर नहीं खेल पाते। माता पिता अक्सर बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बच्चों के विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। गाँव के बच्चे व्यवहारिक ज्ञान अधिक सीखते हैं। अगर यही बात करें कि शहर के और गाँव के बच्चों पर विकास का क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्रोता साथियों गाँव के बच्चे व्यवहारिक ज्ञान अधिक सीखते हैं, जबकि शहर के बच्चे तकनीकी आधुनिकता ज्ञान जल्दी सीखते हैं। दोनों ही प्रकार की सीख जीवन में जरूरी है। गांव के बच्चों में सामाजिक

0: जुड़ाव और सामूहिक भावना मजबूत होती है। शहर के बच्चों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास अधिक दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: गांव के बच्चों को शारीरिक गतिविधियां अधिक मिलती हैं, जबकि शहर के बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ने से स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो बढ़ रही है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सामूहिक दृष्टि से जरूरी पहल है कि गांव में अच्छे स्कूल, पुस्तकालय, खेल मैदान और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि गांव का बच्चा भी आगे बढ़ सके। इसी के साथ शहर में बच्चों को सामूहिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ना चाहिए, ताकि उनमें रिश्ते और समाज के प्रति समझ बढ़ सके। गाँव और शहर दोनों जगह बच्चों को पारंपरिक खेलों से जुड़ना चाहिए, इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल और इंटरनेट जरूरी है श्रोता साथियों, लेकिन बच्चों के लिए उसका संतुलित उपयोग भी होना चाहिए। परिवार को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साथियों कि गांव का बचपन और शहर का बचपन दोनों अपने अपने तरीके से बहुत खास है। गांव का बचपन प्रकृति, अपनापन और सादगी सिखाता है, जबकि जो शहर का बचपन है रीना व आधुनिक सोच, तकनीक और अवसरों से परिचित कराता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम दोनों की अच्छाइयों को अपनाएं। अंजलि जी, अगर गांव के बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले और शहर के बच्चों को प्रकृति या फिर सामाजिक जुड़ाव का अनुभव मिले, तो एक संतुलित और स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है।
0: जी,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन केवल सुविधाओं से सुंदर नहीं बनता है, बल्कि प्यार, संस्कार, स्वतंत्रता, सीख और साथ ही सामुदायिक सहयोग से समृद्ध होता है।
0: जी,
1: ऐसे में हर बच्चे को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए साथियों, जहाँ वह खुलकर हंस सके, खेल सके और सीख सके, साथ ही अपने सपनों को पूरा करने का साहस भी पा सके। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि यही एक मजबूत समाज और उज्जवल भविष्य की असली पहचान मानी जाती है।
2: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम कह सकते हैं कि आज के बच्चे पहले की तुलना में अधिक व्यस्त हो गए हैं। खेल कूद की जगह ऑनलाइन गेम ने ले ली है, दादी नानी की कहानियों की जगह मोबाइल ने ले ली है। यह बदलाव बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में भी गहरा प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल रीना, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
3: अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम।

मिले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को,
1: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल को,
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को।
0: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुंद, आप एक कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुंद, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो। आजे नानी नानी आदत बदलंगा त आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हैं, यहाँ आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जिनी हवा में आपड़े हाल रह हैं, ये भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। हो गए, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं, बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा डंगा, पानी ने बचा डंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
2: होवे, आज नाना कदम है ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कहते हैं कि उनका जुड़ाव हमारे वनों से, हमारी प्रकृति से पहले से ही बना हुआ है। तो ऐसे में हम आज कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आदिवासी संस्कृति जो है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है।
1: जी बिल्कुल, ये बात सभी जानते हैं कि वन संरक्षण के जो प्रयास हैं और आदिवासी संस्कृति से इसका जुड़ाव बहुत ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो यदि वन संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और लोक संस्कृति से जुड़े तरीकों का जो महत्व है, उसका इनकी लोक संस्कृति में भी जो है निहित वनीकरण के जो सूत्र हैं वो अक्सर बड़े प्रभावी होते हैं और वो स्थायी भी होते हैं। वनों को जो बचाने में हमेशा से लोक संस्कृतियों का योगदान रहा है, उसमें आदिवासी संस्कृति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि जो जंगल हमको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण एक बड़ा जंगल हम देख पाते हैं। पेड़, वनस्पति, भोजन उत्पादन की प्रक्रिया, परागण करने वाले कीट, मिट्टी की उर्वरकता, जल स्रोतों और जलवायु संतुलन, इन सभी के लिए वन बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए वन संरक्षण को सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की देखभाल का महत्वपूर्ण मसला है। तो इसका उद्देश्य भी है कि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाएं, इसके संरक्षण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम प्रोत्साहित करें और हम मिलके पेड़ लगाने की जो मुहिम है यहाँ तक सीमित न रह के इस पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्णता से जुड़ी हुई सोच के साथ इसे अपने जीवन में उतारें। क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहूँगा, वन है जो हमारे भोजन, पोषण, हमारी दवाइयाँ और हमारे पशुधन, इसी के साथ साथ हमारी मिट्टी और जल, इन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो वन अभी के समय में बचे हुए हैं वो आदिवासी संस्कृति के एक जुड़ाव से, उनके प्रकृति के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं। यही सर, अभी के समय में क्या चुनौतियां हमारे सामने आती हैं वनीकरण को लेकर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।
1: जी, सामान्य रूप से यदि हम चुनौतियों की बात करें तो वनीकरण के जो कार्यक्रम है आजकल, तो ज्यादातर उनमें वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाता है। प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से हम इसे ही वनीकरण का मुख्य तरीका मान लेते हैं। यह तरीका पर्यावरण के संपूर्ण पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम देखते हैं कि कई बार वनीकरण में जिन प्रजातियों का चयन किया जाता है तो वो गैर स्थानीय प्रजातियां होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसी कारण से कई बार ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के भी लिए नुकसानदायक होती है और वनीकरण के लिए किए गए हमारे जो प्रयास हैं उनमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना हमने उसके लिए प्रयास किए थे, वो चाहे हमारे आर्थिक हो या अन्य तरह के प्रयास हों। इसी तरह से यदि हम देखें कि दक्षिणी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहां बागड़ अंचल में, तो इसके दुष्प्रभावों को हम साफ देख सकते हैं। पारंपरिक रूप से राजस्थान के सामुदायिक वन और गोचर भूमि या चारागाह स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित जगह हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ गैर स्थानीय पौधे काफी बड़ी मात्रा में लगा दिए गए हैं, जिससे न केवल स्थानीय घास की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है बल्कि वन्य जीव और परागण करने वाले कीटों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है। वन संरक्षण की योजनाओं में इन परिस्थिति की और सांस्कृतिक जरूरतों की ये एक तरह से अनदेखी है, जिससे वन प्रबंधन में एक रूपता और कृत्रिमता बढ़ गई है। यानी कि एक ही तरह के पेड़ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं जो कि जैव विविधता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वनीकरण के जो मौजूदा प्रयास हैं उसमें हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति का क्या योगदान है वन संरक्षण को लेकर।
1: पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति वन संरक्षण के प्रयासों में जो इनके सांस्कृतिक तरीके हैं उनका बहुत विशेष महत्व है।
0: जी हाँ,
1: लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र अक्सर प्रभावी और स्थायी होते हैं। तो उदाहरण के लिए राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को हम अगर देखें और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पहला दृष्टिकोण प्रशासनिक है, जो कि एक मॉडल पे आधारित होता है,
0: जी,
1: जिसमें कई बार व्यवसायिक वृक्षारोपण को ही मुख्य उपाय मान लिया जाता है। तो वन विभाग का या प्रशासन का ये जो दृष्टिकोण है स्थानीय क्षेत्रों में अक्सर असफल हो जाता है,
0: जी हाँ,
1: क्योंकि कई प्रजातियां ऐसी होती है जो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुरूप नहीं
0: नहीं होती
1: होती।
0: है, जी हाँ,
1: तो यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनीकरण के स्थानीय मॉडल अपनाए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बजाय पहले स्थानीय घास और पौधों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं
0: जी,
1: और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाने की पहली सीढ़ी हम इन्हें मान सकते हैं। अब इसी तारतम्य में यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें, तो जो हमारा आदिवासी समुदाय है जिन्होंने अपनी पारंपरिक वनीकरण पद्धतियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे वागड़ क्षेत्र की भूमि पर स्थानीय पौधों घासों का रोपण किया। जो जगह किन्हीं कारणों से या तो पेड़ों की कटाई से या किसी तरह की दूसरी परियोजनाओं में खत्म हो गई थी, वहां पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई
0: जी,
1: और परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में वहां वन्य जीवों की भी वापसी हुई है, जल स्रोत पुनर्जीवित हुए हैं और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की झलक वहां नजर आने लगी है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है उनके प्रयासों को हम देखते हुए हमारे वनों को हम बचा सकते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें पारंपरिक ज्ञान के तौर पर हमारे जो वन है उनको बचाने में योगदान दे सकती है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वन को बचाने के लिए जो नीतियां हम देखते हैं उसमें लोक संस्कृति की आखिरकार जरूरत क्यों है।
1: तो वन संरक्षण की मौजूदा नीतियों में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज करना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। वनों की वास्तविक सुरक्षा और बहाली के लिए हमें वन संरक्षण में आदिवासी लोक संस्कृति को जगह देनी होगी। वनों की पारंपरिक अवधारणाएं जैसे हमारे वागड़ क्षेत्र में मातानुवन, देवनुवन की जो संस्कृति हमें वनों के स्थानीय संरक्षण के सही रास्ते दिखाती है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि इस तरह से संरक्षित की गई जगह से उनके उत्पादों का उपयोग करने में तो कोई रोक नहीं है, पर यहाँ से पेड़ों को काटा नहीं जाता,
0: जी,
1: क्योंकि इन्हें देवी या देवता का प्रतीक भी माना जाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामूहिक चेतना के सिद्धांत पे ये आधारित होते हैं, जिससे समाज में साझा विश्वास और मूल्यों की शक्ति पर जोर दिया जाता है।
0: बिल्कुल
1: यह समुदाय को प्रेरित करता है कि वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं और वनों को एक पारिवारिक उत्तरदायित्व के रूप में देखें।
0: जी,
1: इसलिए पारिवारिक स्तर पर बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकती है, जिससे समुदाय अपने पर्यावरण के साथ भावनात्मक और नैतिक जुड़ाव महसूस करते हैं।
0: जी,
1: वन संरक्षण और वनीकरण नीतियों में लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का समावेश अत्यंत आवश्यक है, जो आदिवासी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है।
0: जी बिल्कुल सर,
1: जब तक वनीकरण नीतियों में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्कृति के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक पर्यावरणीय स्थिरता का हमारा जो सपना है वो भी पूरा करने में कठिनाइयां होगी।
0: जी,
1: वनों की वास्तविक भलाई के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटकर पारंपरिक और सामुदायिक उपायों को अपनाने की जरूरत है।
0: जी जी।
1: तो लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र ही हमें वनों के संरक्षण और इनके स्थायित्व की दिशा दिखाते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वनीकरण के लिए आदिवासी संस्कृति की जो चीजें हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी संस्कृति में वनों को देवता या माता के तुल्य माना जाता है और उनकी कटाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से ये समझ पाए कि किस तरीके से आदिवासी जो संस्कृति है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है। तो सर, कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણા વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડે તક હતા અને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। આશા કરા હો કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનો। તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લાઈક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी।

0: अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियाँ और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज का हमारा विषय रहेगा आपसे बातचीत का, बुजुर्गों को समय देना क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के घर में बुजुर्ग लोग तो रहते ही है और कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें समय नहीं दे पाते हैं तो उनका समय भी नहीं निकलता और वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम यही बताना चाहेंगे कि हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको हम समय किस तरह से दें, क्योंकि समय मिलना तो बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम जानेंगे।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी बातें कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ हम हमारे दोस्तों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है, बुजुर्गों को समय देना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि हम देखते हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने ही परिवार के लिए समय कम पड़ने लगा है। मोबाइल हो गया, इंटरनेट, नौकरी, पढ़ाई और सामाजिक भागदौड़ के बीच सबसे अधिक उपेक्षित यदि कोई हो रहा है तो वो है हमारे बुजुर्ग। वही बुजुर्ग जिन्होंने अपने जीवन का हर पल परिवार की खुशियों के लिए समर्पित कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: आज अपने ही घर में अकेलापन का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में समझना बहुत जरूरी है श्रोता साथियों कि बुजुर्गों को समय देना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, मानवता और संवेदनशीलता की पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि किसी भी परिवार और समाज की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव होता है और यह अनुभव हमारे बुजुर्गों के पास होता है। बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े लोग नहीं होते बल्कि वे जीवन की अनगिनत सीख, संघर्ष, परंपरा और संस्कार अपने भीतर समेटे हुए होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार और समुदाय को संभालने में बिताया होता है। लेकिन दुख की बात यह है जागृति जी कि आज तेजी से बदलती जीवन शैली, व्यस्त दिनचर्या और मोबाइल की दुनिया ने बुजुर्गों को धीरे धीरे अकेला कर दिया है। आज कई घरों में बुजुर्गों की जरूरत तो महसूस की जाती है लेकिन श्रोता साथियों उन्हें समय कम दिया जाता है। लोग यह सोचते हैं कि पैसे और सुविधाएं दे देना ही काफी है, जबकि सच यह है जागृति जी कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत अपनापन, बातचीत और साथ की होती है। उनके लिए कुछ समय निकालना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सम्मान, संवेदना और इंसानियत का प्रतीक है।
0: जी हाँ, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को अंजलि हम कहना चाहेंगे कि बुजुर्ग परिवार की जड़ होते हैं। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ मजबूत होती है तो पूरा वृक्ष सुरक्षित और हरा भरा रहता है।
1: बिल्कुल,
0: उसी प्रकार परिवार में बुजुर्गों का सम्मान और साथ परिवार को मजबूती देता है। उनके अनुभव, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
1: बिल्कुल,
0: जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है श्रोताओं, उस घर में सुख और संस्कार दोनों बसते हैं। हम देखते हैं कि बुजुर्गों ने अपने जीवन में अनेक कठिनाई देखी होती है अंजलि। उन्होंने संघर्ष किया होता है, परिवार को खड़ा किया होता है। वे जीवन के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब युवा पीढ़ी किसी समस्या में उलझ जाती है तब बुजुर्ग अपने अनुभव से सही मार्ग दिखा सकते हैं। यदि हम उनके साथ समय बिताएंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो हमें जीवन की सच्चाइयों को समझने का अवसर मिलेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, हर बुजुर्ग अपने साथ जीवन का लंबा अनुभव लेकर चलते हैं। उन्होंने कठिन समय जो देखा होता है, संघर्ष किए होते हैं और कई परिस्थितियों से सीख हासिल की होती है। श्रोता साथियों, उनकी बातें और उनके अनुभव परिवार को सही दिशा देते हैं, बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, कठिन समय में धैर्य रखना सिखाते हैं और जीवन की गलतियों से बचने में मदद करते हैं। बुजुर्गों का अनुभव किताबों में नहीं मिलता, उनकी सीख जीवन की सच्चाई से जुड़ी होती है। बढ़ती उम्र के साथ इंसान शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है, ऐसे समय में उन्हें केवल दवाइयों की नहीं बल्कि भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब परिवार के लोग उनसे बातें करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं तो बुजुर्ग खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। लेकिन जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो वे अकेलापन भी महसूस करने लगते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज अनेक बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। बच्चे पढ़ाई या नौकरी के कारण दूर चले जाते हैं, घर में माता पिता अकेले रह जाते हैं। कई बार बच्चे साथ रहते हुए भी अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बुजुर्गों से बात तक नहीं कर पाते। इससे बुजुर्ग मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं रही। ये भावना उनके मन में दुख, निराशा और अवसाद पैदा करती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, यदि हम प्रतिदिन कुछ समय उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी भावनाओं को समझें तो उनका अकेलापन काफी हद तक कम हो सकता है।
1: जी जी,
0: कहा गया है कि थोड़ा सा समय बुजुर्गों को देना चाहिए, उनके चेहरे की मुस्कान वापस लौट आएगी। तो श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे घर में जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो केवल परिवार के सदस्य नहीं होते, वे संस्कारों के शिक्षक भी होते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार सबसे पहले दादा दादी, नाना नानी से मिलते हैं।
1: जी जी,
0: उनकी कहानियाँ, उनके जीवन के अनुभव और उनकी सीख बच्चों के व्यक्तित्व को बेहतर बनाते हैं। आज जब बच्चे मोबाइल और टीवी की दुनिया में खोते जा रहे हैं तब बुजुर्ग ही उन्हें परिवार, रिश्तों और संस्कृति का महत्व समझा सकते हैं। बुजुर्गों की सीख बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से हमें बुजुर्गों को समय देना जरूरी होता है। तो बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम जान पा रहे थे कार्यक्रम के माध्यम से कि किस तरीके से बुजुर्ग जो हैं वो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं और किस तरीके से हमें उन्हें समय देना चाहिए। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि संयुक्त परिवारों में पहले दादा दादी और बुजुर्ग परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़े रखते थे। वे बच्चों को कहानियां सुनाते थे, परिवार में शांति बनाए रखते थे, रिश्तों को संभालते थे और परंपराओं और संस्कारों को आगे बढ़ाते थे। उनकी उपस्थिति जागृति जी घर में अपनापन पैदा करती थी। आज जब परिवार छोटे होते जा रहे हैं तब बुजुर्गों का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज कई जगह बुजुर्गों को बोझ समझा जाने लगा है। कुछ लोग उन्हें निर्णय से दूर रखते हैं, उनकी जरूरतों को महत्व नहीं देते। ये केवल पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक समस्या है। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान कम होने लगे वहाँ श्रोता साथियों संवेदनशीलता भी कम होने लगती है, क्योंकि जो समाज अपने अनुभव और परंपरा का सम्मान नहीं करता वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है।
1: जी हाँ, और इसी के साथ श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति में सदैव बुजुर्गों का सम्मान किया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और परंपराओं में माता पिता और बुजुर्गों को देवताओं के समान माना गया है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव का संदेश हमें यही सिखाती है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का आदर करता है उसे समाज में भी सम्मान मिलता है। कहा गया अंजलि कि संस्कार वही सच्चे हैं जहाँ बुजुर्गों के चरणों का सम्मान हो।
0: बिल्कुल,
1: बुजुर्गों को समय देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वे भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार उन्हें बीमारी, कमजोरी और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में परिवार का साथ उनके लिए सबसे बड़ी दवा माना जाता है। जब बच्चे या परिवार के सदस्य उनके पास बैठते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनकी मदद करते हैं, तब उन्हें महसूस होता है अंजलि कि वे अकेले नहीं हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथी आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्यार और अपनापन बुजुर्गों की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम देखते हैं कि समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये स्थिति चिंता का विषय है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही माता पिता अपने अंतिम समय में अकेले जीवन बिताने को मजबूर हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये केवल सामाजिक समस्या नहीं है श्रोताओं, बल्कि संवेदनाओं के कमजोर होने का संकेत है। यदि हर परिवार अपने बुजुर्गों को समय और सम्मान दे तो शायद किसी भी बुजुर्गों को वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता न पड़े।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि बुजुर्गों के साथ समय कैसे बिताएं। तो श्रोता साथियों रोज कुछ समय उनसे बातचीत करें, उनकी पुरानी यादें और अनुभव सुनें, बच्चों को उनके साथ बैठने के लिए प्रेरित करें, उनके स्वास्थ्य और जरूरतों का ध्यान रखें, उन्हें निर्णयों में शामिल करें, उनके जन्मदिन को और खास दिनों को महत्व दें। छोटी छोटी बातें भी बुजुर्गों को बहुत खुशी देती है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की जड़ें हैं। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया होता है, इसलिए उनका सम्मान और साथ ही हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान भी है। उन्हें समय देना केवल कुछ मिनट साथ बैठकर बात करना नहीं बल्कि यह एहसास दिलाने की प्रक्रिया है कि वे आज भी परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी मुस्कान, अनुभव, आशीर्वाद किसी भी भौतिक सुविधा से अधिक मूल्यवान होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज जरूरत इस बात की है कि

0: अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकाल कर अपने बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनकी बातें सुने, उनकी भावनाओं को समझे और उन्हें अकेलापन महसूस न होने दें, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग खुश रहते हैं वहाँ संस्कार, अपनापन और शांति बनी रहती है, और जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है वह समाज हमेशा मजबूत और संवेदनशील बना रहता है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और हमें ये भी समझना होगा कि एक दिन हम भी बुजुर्ग होंगे। जिस प्रकार का व्यवहार हम आज अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, आने वाली पीढ़ी वही सीखेगी।
0: बिल्कुल,
1: यदि बच्चे अपने माता पिता को, दादा दादी का सम्मान करते देखेंगे तो वे भी भविष्य में अपने माता पिता का आदर करेंगे। इस प्रकार बुजुर्गों को समय देना केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं है श्रोताओं, बल्कि भविष्य के संस्कारों की नींव है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि बुजुर्ग हमारे जीवन के अमूल्य धरोहर है श्रोताओं। उनका अनुभव, प्रेम, त्याग और आशीर्वाद हमें जीवन में सही दिशा देते हैं। उन्हें समय देना केवल उनके लिए नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक है। यदि हम अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुने, उन्हें सम्मान दे तो उनका जीवन खुशियों से भर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: समाज की सच्ची प्रगति वही है जहां बुजुर्ग सम्मान और प्रेम के साथ जीवन जी सके। बुजुर्ग किसी घर का बोझ नहीं होते श्रोताओं, वे उस घर की पहचान होते हैं। उनकी मुस्कान में परिवार की खुशी छिपी होती है। इसलिए हम सबके मन में ये बात जम जानी चाहिए कि अपने बुजुर्गों को केवल सुविधा नहीं बल्कि अपना समय, सम्मान और प्रेम भी देंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग खुश रहते हैं वहाँ भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बुजुर्गों का सम्मान करिए, संस्कारों से ही परिवार रोशन होते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि बुजुर्गों को दिया गया समय कोई एहसान नहीं बल्कि हमारी इंसानियत और संस्कारों की पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी बरगद की छांव जैसी होती है जो हर पीढ़ी को सुरक्षा, सीख और अपनापन देती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, बुजुर्गों की बातें कभी पुरानी नहीं होती, उनमें जीवन को सही दिशा देने वाला अनुभव छुपा होता है। बुजुर्ग घर का वह अनुभव है जिनके साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी जीवन की बड़ी सीख बन जाता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की कि बुजुर्गों का सम्मान क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। तो जाने से पहले सुनवा देते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से बुजुर्गों के सम्मान को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई में तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ।
2: सोराना नक काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार।
1: भिंडा तुरिए आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर।
2: सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ले, आ खवानो आल।
1: अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, भीड़ में चलते चलते कभी खुद को पीछे छोड़ देते हैं, दूसरों की आवाज सुनते सुनते अपनी ही आवाज भूल जाते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम हर रोज एक नया विषय लेकर हाजिर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो शायद हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं छुपा है। जानेंगे कि क्यों कई बार हम खुद से दूर हो जाते हैं। हम दिन भर लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम महसूस करते हैं कि कुछ तो है जो छूट गया है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और यह भी सच है कि कई बार हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। जानेंगे आज हम कार्यक्रम के माध्यम से कि क्यों कई बार हम खुद से दूर हो जाते हैं। बातें इस विषय पर ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हम बात करेंगे कि क्यों कई बार हम खुद से दूर हो जाते हैं। श्रोता साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि खुद से दूरी तब बढ़ती है जब हम दूसरों के करीब होने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। जी हाँ, यह दूरी अचानक नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है। जब हम अपनी खुशी डालते हैं, दूसरों की उम्मीद में खुद को ढालते हैं, लोग क्या कहेंगे में उलझ जाते हैं, तब हम खुद को थोड़ा थोड़ा दूर करने लगते हैं। बचपन में श्रोता साथियों हम जैसे थे, खुलकर हंसते थे, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी, तुलना बढ़ी, डर बढ़ा और हमने खुद को बदलना शुरू कर दिया। ऐसा मत करो, वैसा बनो, और इसी बीच असली हम कहीं पीछे छूट गया। अक्सर दोस्तों डर हमें रोकता है, कहता है हमें कि अगर हम असफल हो गए तो तुलना हमें कमजोर कर देती है, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो मुझसे बेहतर है, और इन दोनों के बीच हम खुद को कम आंकने लगते हैं। दोस्तों कहना चाहूंगी कि जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तब हम अपनी पहचान खोने लगते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि सब खुश रहें, यही ठीक है, लेकिन इस कोशिश में हम खुद को नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी पसंद छोड़ देते हैं, अपनी आवाज दबा देते हैं और धीरे धीरे हम खुद से दूर हो जाते हैं। हम दिन भर दूसरों को बहुत सुनते हैं लेकिन खुद से बात कब करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने आखिरी बार कब खुद से पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे दोस्तों हम, तो हम खुद से जुड़ेंगे कैसे? क्योंकि किसी ने कहा है कि खुद को सुनना ही खुद से जुड़ने की शुरुआत होती है। अब बात आती है कि वापस कैसे आए हम खुद के पास। तो दोस्तों, खुद के लिए थोड़ा समय हमें निकालना है, पुराने शोक, छोटी खुशियां हमें वापस लानी है, और हर बार दूसरों को खुश करना जरूरी नहीं है, ना कहना भी हमें सीखना होगा, और अपने मन की बात हमें सुननी है। जब हम खुद को समय देते हैं तब हम खुद को वापस पाते हैं। कहते हैं ना कि खुद को ढूंढने निकले थे, दूसरों में उलझते चले गए, अपनी आवाज सुननी थी हमें पर शोर में खोते चले गए। अब जब ठहर कर देखा खुद को तो समझ आया ये हाल, सब कुछ तो साथ था, बस खुद ही साथ नहीं थे। तो साथियों, खुद से दूर होना एक सामान्य बात है, लेकिन वहीं रुक जाना सही नहीं है। हमें वापस आना होगा, खुद को फिर से पहचानना होगा, क्योंकि अगर हम खुद के साथ नहीं है तो दुनिया के साथ होने का क्या मतलब है। जिंदगी तभी पूरी लगती है दोस्तों जब हम खुद से जुड़े रहते हैं। इसलिए चलो फिर खुद से मिलते हैं, थोड़ा रुकते हैं और थोड़ा समझते हैं। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम में मैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहूंगी। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हम बहुत सी बार खुद से दूर होते चले जाते हैं। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि कई बार हम एकदम से नहीं बदलते, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी असली पहचान खो देते हैं, और जब ध्यान आता है तब हम खुद को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम काम कर लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार व्यस्त रहना खुद से भागने का एक तरीका भी बन सकता है, क्योंकि जब हम अपने दुख, गुस्से और डर को व्यक्त नहीं करते, वे अंदर जमा होकर हमें खुद से दूर कर देते हैं। क्योंकि जो भावनाएं कहीं नहीं जाती है दोस्तों, वो भीतर दीवार बन जाती है। हम दूसरों की भूमिका निभाते निभाते कहना चाहूंगी दोस्तों कि अपनी असली पहचान का सवाल ही भूल जाते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किससे खुशी मिलती है, अगर ये सवाल नहीं पूछे हमने खुद से तो दूरी बढ़ती ही जाएगी। हर समय खुद को साबित करने की कोशिश हमें दूसरों के हिसाब से जीने पर मजबूर कर देती है, और इस चक्कर में हम अक्सर अपने असली स्वरूप को खो देते हैं। हमारे अंदर हमेशा एक आवाज होती है जो सही गलत का हमें संकेत देती है, लेकिन जब हम उसे बार बार अनदेखा करते हैं तब खुद से दूरी बढ़ती है। किसी ने कहा है कि जब हम अपनी आवाज को अनसुना करते हैं तब दुनिया की हर आवाज भारी लगने लगती है। थका हुआ मन खुद से जुड़ नहीं पाता। जब हम खुद को आराम नहीं देते दोस्तों, तो हम अपने अंदर की शांति से दूर हो जाते हैं। जब हम खुद को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए, तब हम खुद से दूर भागने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, यही सोच दूरी बनाती है। हम सोचते हैं रोना नहीं चाहिए, कमजोर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सच यह है कि इंसान को इंसान बने रहने देना भी जरूरी है। यह तो हम अतीत में उलझे रहते हैं, इसलिए हर समय मजबूत बनने का दबाव हमें खुद पर नहीं डालना है। इसी के साथ हमें वर्तमान में रहना है। या तो हम अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में वर्तमान को जीना भूल जाते हैं, और यहीं से दूरी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, खुद से दूरी तब नहीं बनती जब हम गिरते हैं, बल्कि तब बनती है जब हम खुद को उठाना छोड़ देते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा होता है उसे भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगता। खुद को खोना सबसे आसान है और खुद को पाना सबसे बड़ी जीत। हम दुनिया से नहीं, खुद से भागते हैं और खुद को ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमेशा खुद से जुड़े रहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाकर रखिए। हमारे लिए साथियों यह भी समझना जरूरी है, खुद से दूर होना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली स्थिति है। यह तब शुरू होती है जब हम अपनी प्राथमिकताओं से समझौता करने लगते हैं, अपनी भावनाओं को टालते हैं, अपने भीतर की सच्चाई को सुनने के बजाय बाहरी शोर को महत्व देने लगते हैं। इस दूरी का सबसे बड़ा असर ये होता है दोस्तों कि जीवन भले ही चलता रहता है, पर उसमें संतोष और आत्मिक जुड़ाव जो होना चाहिए वह कम होने लगता है। खुद से जुड़ा वही आधार है श्रोता साथियों, जिस पर जीवन की सारी मजबूती टिकी होती है। जब व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं और जरूरतों को समझता है, तभी वह सही निर्णय ले पाता है और जीवन को संतुलन के साथ जी पाता है। इसके विपरीत जब यह जुड़ाव कमजोर होता है तो व्यक्ति बाहर से सब कुछ सही होते हुए भी भीतर से थोड़ा थोड़ा अधूरा महसूस करता है। इसलिए दोस्तों, जरूरी यह नहीं कि हम दुनिया से दूरी बनाएं, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की दूरी को पहचानें और उसे कम करने की कोशिश करें। खुद से फिर से जुड़ना कोई बड़ा बदलाव नहीं मांगता, बल्कि छोटी छोटी जरूरतों से शुरुआत होती है। अपने मन की बात सुनना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, अपने लिए थोड़ा समय निकालना, यही छोटे कदम धीरे धीरे हमें फिर से अपने करीब ले आते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खुद से जुड़ाव एक बार हासिल करके खत्म होने वाली चीज नहीं होती है। यह तो एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हम जीवन भर बना कर रख सकते हैं। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम अपने भीतर के संवाद को जीवित रखते हैं ना दोस्तों, तो हम कभी पूरी तरह खुद से दूर नहीं होंगे। इसलिए कहना चाहेंगे दोस्तों कि खुद से जुड़ाव ही वह शक्ति है जो जीवन को सिर्फ चलने नहीं, सही मायने में जीने लायक बनाती है। जो व्यक्ति खुद के साथ खड़ा रहना सीख लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं रहता।
तो दोस्तों यह था हमारा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी और ढेर सारी हो गई है और अब मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर से जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई प्यारी प्यारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। होटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।